0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: श्रोतागण, ई प्रातः कालीन बेला में स्वागत बा रउआ सबके प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। तो दोस्त लोग रउआ तय जानत ही बानी कि ई प्रोग्राम लेके आवेली राव रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले रउआ सबके सुप्रभात प्रणाम। लोग हर बार की तरह ई बार भी हमरा पास बार रोग स्वास्थ्य की संवारे खातिर बहुत सारा हेल्थ टिप्स। तो चलिए शुभ आरंभ कर जाओ आज के कार्यक्रम के। दोस्त लोग, आज जानल जाए सबसे पहले चना के शक्तिशाली गुण के बारे में। नाश्ता खातिर एक मुट्ठी काला देशी चना पानी में डाल के रख दी। सुबह एक एक कच्चा या उबाल के या तवा पर थोड़ा भून के मसाला मिला के खूब चबा चबा के खाएं। चना के साथ किशमिश खा सकता नहीं और ये कोनो मौसमी फल भी खा सकता नहीं। तो केला के पानी से धो के छिलका सहित गोलकार टुकड़ा में काट ली और ये छिलका सहित चबा चबा के खाएं। नाश्ता में अन्य कोनो चीज ना ली। भोजन में भी रवा चना के इस्तेमाल कर सकता नहीं, जैसे रोटी के आटा में चोकर मिलल होखल होके और इस सब्जी या दाल में चना के चुनी यानी चना के छिलका मिलल होखल होके तो ई आहार बहुत ही सुपाच्य और ई पौष्टिक हो जाला। चोकर और ई चना में सब प्रकार के पोषक तत्व होला। चना गैस ना करेला। शरीर में विषाक्त वायु होके तो अपान वायु के रूप में बाहर निकाल देला। इसे पेट साफ और हल्का रही, पाचन शक्ति प्रबल बनल रही, खाल पियल अंग लागी, जैसे शरीर चुस्त दुरुस्त और शक्तिशाली बनल रही। मोटापा कमजोरी, गैस, मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, भकंदर आदि रोग न हुई। चना के आटा के उपटन शरीर पर लगा के स्नान करे से खुजली रोग नष्ट होला और त्वचा उजला होला। पूरा परिवार चना के नियम पूर्वक सेवन करे तो घोड़ा की तरह शक्तिशाली, फुर्तीला, सुंदर और परिश्रमी बनल रह सकेला। जैसे में गेहूं, चना और जौ तीनों समान वजन में जैसे तीनों दो दो किलो लेके मिला ली और मोटा पिसवा के चाले बिना यानी चोकर सहित आटा की रोटी खाइल शुरू कर दी। एके बेजड़ या मिक्सी रोटी कहल जाला। चना के गरीब के भोजन भी कहल जाला, लेकिन एके ताकत के हमनी के अनदेखा कर देनी सर। चना सस्ता भी है और सरल सुलभ भी। ऐसे हमनी के पथ्य यानी सेवन करे योग्य आहार के रूप में चना के सेवन करके स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त करे के चाहिए। तो दोस्त लोग ई तरह है चना के घरेलू नुस्खा। चलिए अब जान लिया जाओ रंगीन आहार सेहत के आधार एकरा बारे में। वैज्ञानिक लोग ई पौले बा कि अलग अलग रंग के खाद्य पदार्थ रउआ शरीर के अलग अलग हिस्सा के फायदा पहुंचावेला। तो चलिए जानल जाओ कि कौन सा रंग शरीर के कौन अंग के मित्र है। सफेद यानी आलू, लहसुन, सफेद मशरूम आदि रउआ फेफड़ा खातिर फायदेमंद होला। नारंगी रंग प्लीहा के सलामती खातिर नारंगी रंग के चीज खाइल फायदेमंद होला। संतरा में विटामिन सी तो होला ही, कुछ मात्रा में विटामिन ए भी होला जौन प्लीहा खातिर अच्छा होला। हरा फल सब्जी में लुटीन व इंडोल नामक फाइटोकेमिकल्स होला जौन लीवर की रक्षा करेला, अतः हरा रंग की चीज खूब खाई। जामुनी यदि रउआ अपना मस्तिष्क की सलामती चाहतनी तो जामुनी फल सब्जी के अपना आहार में शामिल करें। इमे हा अंगूर, प्याज, जामुनी रंग के पत्ता गोभी, बैगन आदि शामिल करें। दोस्त लोग यूँ काला रंग लोग के कम ही पसंद होला, खास तौर पर खाए पिए के मसाला में, लेकिन यकीन मानी काला रंग के आहार रउआ गुर्दा खातिर बहुत लाभकारी हुई। अतः मुनाका, काली चौला फली, काला जैतून आदि खाई करी। लाल यदि रउआ दिल के रक्षा करे के चाहतनी तो लाल रंग के चीज खाई। लाल रंग के फल सब्जी में फाइटोकेमिकल्स पावल जाला, तरबूज, अमरूद, टमाटर आदि ई श्रेणी में आवेला। एस्ट्रॉबेरी, रसबेरी और बीटरूट में एंथोसाइनिन पावल जाला। ई फाइटोकेमिकल्स के ही एगो समूह है जौन उच्च रक्तचाप के नियंत्रित करेला और डायबिटीज से जुड़ल समस्या से बचाव करेला। तो दोस्त लोग अब हम बताएं दूध से निखरत कोमल सौंदर्य के घरेलू नुस्खा। दूध के गुलाब जल में मिला के लगावे से त्वचा के रंगत निखरेला। दूध में थोड़ा सा नमक मिला के चेहरा पर सुबह शाम लगावे से मुहासा दूर होला। बादाम, बेसन गाजर के रस दूध में मिला के उबटन की तरह लगावे से त्वचा में कमनीयता आवेला। दूध के पूरा शरीर पर लगा के रगड़े से त्वचा में चमक आवेला। नाखून के सुंदर बनावे खातिर कुछ देर दूध में भिंगा के रखी। बर्तन साफ करे से हाथ खुरदुरा हो जाला। ते ए पर दूध में नींबू के रस मिला के लगावे से राउर हाथ सुंदर हुई। होठ के कलापन दूर करे खातिर दूध के होठ पर प्रतिदिन लगाई। आधा चम्मच काला तिल और आधा चम्मच सरसों के बारीक पीस के दूध में मिला के मुहासा पर निरंतर लगावे से फायदा होला। चिरौजी के दूध के साथ पीस के लगावे से त्वचा चमकदार बनेला। तो दोस्त लोग अब जानल जाई जब पेट में दर्द होके तक का करे के चाहिए। पेट के ऊपरी भाग में दर्द की स्थिति में 3 बूंद पिपरमेंट ऑयल, 2 बूंद क्लोव ऑयल, 1 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल के मिश्रण में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल मिला के मालिश करे से लाभ होला। दर्द यदि पेट के निचला हिस्सा में होके तो 2 बूंद जिरेनियम ऑयल, 2 बूंद रोजमेरी ऑयल। वह 1 बूंद जिंजर ऑयल में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल के दर्द वाला भाग पर हल्का हाथ से मालिश कई जा सकेला तो इसे दर्द में राहत मिली। तो दोस्त लोग ई रहला आज के घरेलू नुस्खा जी में हमने के जननी है संग चना के घरेलू नुस्खा और रंगीन आहार के बारे में ओकरा साथे साथे दूध से निकलल कोमल सौंदर्य के बारे में। तो अब वो वक्त आ गई बा जी में दीपाली ली है रवा से जाए के इजाजत। तो रखिए रवा आपन सेहत के ख्याल रही खुशहाल। नमस्कार।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
7: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
8: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
7: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
5: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
9: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
10: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
9: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
10: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
9: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
10: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
9: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: वारणावत में हाथियों की सवारी, तलवारबाजी, मल्ल युद्ध के अनोखे खेलों के बीच पांडवों का ऐसा राजसी स्वागत। वाह, पांडव अपने सारे दुख दर्द भूल गए। बेटों की खुशी से मां कुंती भी खुश थी, पर दुर्योधन की साजिशों ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। मैं आकाश हूं। मैंने देखा था कि किस तरह दुर्योधन का भेजा हुआ पुरोचन खुद को महाराज पांडु का भक्त बताकर पांडवों को अपने जाल में ले चुका था। इसके लिए उसने अच्छी खासी तैयारी की थी। भोजन के बाद वो उन्हें उस विशाल भवन में ले आया जहां
11: यहां तो नृत्य हो रहा है। क्या इस भवन में नाच गाने का प्रबंध भी है?
12: नहीं नहीं कुमार, कोई नृत्य सभा नहीं हो रही। आपको बस संगीत के स्वर सुनाए देंगे, ऐसे मीठे स्वर जैसे कोई कानों में मिश्री घोल रहा हो। इस स्वर से आपको बहुत मीठी नींद आएगी।
11: किंतु ये कैसे हो सकता है?
12: ये वास्तुकला का एक बिल्कुल नया प्रयोग है युवराज। इस सुंदर भवन में ऐसे कई प्रयोग किए गए हैं। ये देखिए भवन का चंद्रकार मुख्य द्वार। यहाँ से देखिए, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे चंद्रमा धरती पर उतर आया हो।
13: हाँ, इससे तो सचमुच चंद्रमा का भ्रम हो रहा है। भैया वो देखिए, कितना सुंदर झरना है।
11: वाह, अद्भुत।
12: झरना ही नहीं, इधर देखिए ये सुंदर उपवन, ये फूलों की क्यारियाँ, भौरों का गुंजन, ये जल स्रोत, उधर दूर तक फैले वन। आप सबका बहुत मन लगेगा यहाँ।
11: बहुत बढ़िया,
14: पर इतना सब कुछ क्यों किया है आपने?
12: मैं तो महाराज पांडु का ऋण चुका रहा हूँ देवी कुंती, और फिर मुझे आपका आशीर्वाद भी तो चाहिए।
11: क्या ये सारी व्यवस्था तुमने अकेले की है?
12: अरे नहीं धर्मराज, मैं तो आपका एक साधारण सा सेवक हूँ। आप पांचों पांडवों के नाम पर प्रजा ने मुझे सहयोग दिया है। लोगों में आप पांचों की इतनी श्रद्धा है कि आपके एक संकेत पर अपने प्राण तक न्योछावर कर दे।
11: भाई पुरोलाल, सच कहूँ तो ये सारी व्यवस्था किसी चमत्कार से कम नहीं है।
15: तो चलो भाई, अब हम इस चमत्कार का लाभ उठाते हैं।
12: अवश्य अवश्य। और हाँ, किसी भी क्षण किसी सेवा की आवश्यकता हो बता दीजिएगा। भवन के बाहर बने कक्षों में सैनिक है, मैंने उन्हें विशेष निर्देश दिए हैं। ये सभी आपके भक्त हैं, इन्हें सेवा का अवसर अवश्य दीजिएगा।
16: वैसे ऐसा अवसर कभी आएगा नहीं, क्योंकि अब तो यमलोक के दूत ही तुम सबकी सेवा करेंगे।
11: अरे क्या सोचने लगे पुरोलाल?
12: नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। आप सभी विश्राम करें।
11: अब विश्राम कहाँ मामा, विश्राम कहाँ। अब तो युवराज के सिंहासन पर बैठकर ही विश्राम करूंगा।
17: धीरे बोलो भांजे, धीरे बोलो। दीवारों के भी कान होते हैं और गलियारों के भी प्राण होते हैं। किसी को संदेह करने का कोई अवसर मत दो। सिंहासन तो तुम्हारे लिए सुरक्षित हो ही चुका है, बस घोषणा होने की देर है। ये देखो भांजे, देखो।
11: हाँ, सिंहासन का

0: इस भीम के खराटे भी सोने नहीं देते। ये कदमों की हाट किसकी है? युधिष्ठिर पुत्र युधिष्ठिर,
1: क्या हुआ माँ?
0: पुत्र, गलियारे में किसी के आने की आहट सुनाई दे रही है।
1: सो जाओ माँ, भीम के खराटे हैं, मेले में ठूस ठूस के खाया है, इसीलिए ऐसे खराटे मार रहा है।
0: नहीं नहीं पुत्र, नहीं, ध्यान से सुनो, किसी के कदमों की आहट है।
1: हाँ, कोई है तो? कौन है?
2: क्या हुआ भैया
3: इस समय? कौन आया माँ?
0: पता नहीं नकुल पुत्र, जाने कौन है, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा।
2: तुम सब ठहरो, जो भी है मैं ठिकाने लगा के आता हूँ।
3: अरे अरे अरे अरे, शोर मत करो।
2: मैं के बच्चे, कौन है तू? बोल, नहीं तो एक मुष्टिका से सर फोड़ दूंगा तेरा।
1: अरे ठहरो भीम, ठहरो, उसे बोलने तो दो।
3: मैं सब कुछ बताता हूँ देवी कुंती, पहले मुझे अंदर तो आने दो।
2: तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? किसके गुप्तचर हो तुम?
3: मैं तुम्हारा काका विदुर हूँ, कुमार।
4: अच्छा, तो अपने तात को हम ही नहीं पहचानते?
2: जब तक इस पर मेरी गदा नहीं बरसेगी तब तक ये सच बोलने वाला नहीं।
4: भैया, ये अवश्य कौरवों का गुप्तचर है, तात विदुर के नाम पे छल कर रहा है हमसे। बांध दीजिए इसे खंबे से।
3: देवी कुंती, इन्हें रोकिए। इस भवन में प्रवेश करने के लिए मैंने प्रहरी का वेश धारण किया है। मैं विदुर ही हूँ और बहुत आवश्यक सूचना देने आया हूँ। ये देखिए, ठहरिए, ये देखिए, मैं पांडु भ्राता विदुर ही हूँ।
0: इन्हें क्षमा कर दे महात्मा विदुर, पर आप?
1: क्षमा करें तात, हमसे भूल हो गई। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आप यहाँ इस समय इस रूप में हमें मिलेंगे, पर ऐसा क्या हुआ जो आप?
0: और द्वार पर प्रहरी है, उन्होंने रोका नहीं आपको?
3: एक प्रहरी दूसरे प्रहरी को कैसे रोक सकता है देवी? मुझे रोकने वाला तो इस समय हस्तिनापुर में होगा।
5: कौन? इस गुप्त मार्ग से पुरोचन के सिवा और कौन आ सकता है कुमार?
2: हो, क्या हुआ? उन्हें अग्नि की भेंट चढ़ा दिया ना?
5: बस आपकी अनुमति चाहिए कुमार दुर्योधन, लाक्षाग्रह अग्नि की प्रतीक्षा कर रहा है।
2: अनुमति तो मैं तुम्हें कब से दे चुका हूँ मूर्ख, अब तक तो तुम्हें उन पांडवों की राख लेकर आना चाहिए था पुरोचन।
5: मैं उसके सारे प्रबंध कर चुका हूँ कुमार, वो उस भवन में चैन की नींद ले रहे हैं। अब तो बस चिता को अग्नि देना शेष है, उन्हें लाख के घर में राख होते देर नहीं लगेगी।
2: तो जाओ, जितनी जल्दी हो सके भस्म कर दो उन्हें, ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पहुँचे और वो वहाँ से निकल गए।
5: असंभव है कुमार, अब इस लाक्षाग्रह से उनकी राख ही भार जाएगी।
2: तो जाओ जाओ पुरोचन, और मुझे शीघ्र से शीघ्र शुभ सूचना दो। जाओ।
6: किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं अतात? कौन है यहाँ? कैसा गड्ढा है ये?
3: धैर्य रखे कुमार, खनिक सुरंग का निर्माण कर रहे हैं, इसके रास्ते आप सुरक्षित यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे।
6: मैं अंदर जाके देखूं?
0: बीच में मत बोलो भीम, पहले पूरी बात तो सुन लो।
3: मुझे तो कहने में भी संकोच हो रहा है देवी कुंती, हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत घृणित है।
0: ऐसा क्या करने जा रहे हैं विदुर, आप बोले तो। मैं जानती हूँ कि आप जो भी कहेंगे हमारे भले के लिए ही कहेंगे।
3: दुर्योधन और शकुनी आप सभी को मारने की योजना बना चुके हैं देवी, इसी के लिए उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया है। उनका एक आदमी इस भवन को आग लगा देगा और वो प्रजा को ये बताएंगे कि दुर्घटना में पांडव जलकर मर गए।
1: मुझे उसी समय कुछ संदेह हुआ था जब पुरोलाल हमें ये भवन दिखा रहा था।
3: पुरोलाल नहीं, उसका नाम पुरोचन है।
0: कह रहे हैं आप, इतना बड़ा षड्यंत्र?
1: हम तो इस वारणावत में आते ही नहीं, पर तात धृतराष्ट्र की इच्छा का सम्मान करते हुए हमें यह आना पड़ा।
0: ये क्या कर रहे हो भीम पुत्र? क्रोधित होने से संकट दूर नहीं होगा, धैर्य रखो।
3: समय बहुत कम है कुमार, हमें कभी भी यहाँ से निकलना पड़ सकता है, क्योंकि इस भवन की बनावट ऐसी है कि एक बार इसमें आग लगी तो कोई भी यहाँ से जीवित नहीं निकल पाएगा।
2: मैं उस पुरोलाल को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
3: शांत कुमार भीम, शांत। मेरे खनिक दो रातों से चुपचाप इस सुरंग की खुदाई कर रहे हैं, आज रात किसी भी समय

0: पूरी हो जाएगी। वो भी मेरी ही तरह प्रहरी के वेश में है, उन्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। बस आप सभी अपना ध्यान रखें, प्रोचन कभी भी इस भवन में आग लगा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको इस गुफा मार्ग से निकलना होगा। ये गुफा आप सभी को सुरक्षित स्थान तक ले जाएगी।
1: आप धन्य हैं विदुर, धन्य हैं आप। आपका ये ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आप जैसे महात्माओं के कारण ही हमारे पुत्र अब तक जीवित हैं, वरना जाने क्या होता। पर अब हमने भी सोच लिया है महात्मा विदुर, हम अपने पुत्रों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे।
0: ईश्वर को धन्यवाद दीजिए देवी कि मेरे गुप्तचर ने मुझे दुर्योधन की इस षड्यंत्र की सूचना समय पर दे दी, अन्यथा अनर्थ हो जाता। अच्छा मैं जा रहा हूं, आप अपना और कुमारों का ध्यान रखें।
2: वैसे सुरंग खुदनी तो शुरू हो ही चुकी थी, पर पांडव और कुंती अभी भी मौत के मुंह में थे। लाख से बने भवन के बाहर दुर्योधन के सैनिकों का पहरा था, मतलब अगर पांडव आग लगने पर वहां से भागना भी चाहते तो भी मारे जाते। अच्छा आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं, मतलब आगे कुआं पीछे खाई? पहाड़ों में कहावत है कि भालू के डर से पेड़ पे चढ़े और पेड़ पे देखा कि नौ नौ भालू। सोचिए

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023 35 8 76 या 95 9 99 27 9 82।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070 3242 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट,

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
8: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बच्चों के विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत। सब्जी खरीदने गए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। शराब तस्करी और अन्य मामलों में महिला सहित 31 लोग 24 घंटों में गिरफ्तार। ऑटो चोरी कांड में 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकित मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बच्चों के विवाद को लेकर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रेवतीतगढ़ गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों पक्षों से 4 लोग जख्मी हो गए। सभी को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से घायल शशि भूषण शाह को बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी अनुसार बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान लाठी डंडे और तलवार से एक दूसरे पर हमला किया गया। घटना में दोनों पक्षों से कई लोग जख्मी हैं। घर से सब्जी खरीदने जा रहे एक युवक पर बाइक सवार अपराधियों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि युवक के पीठ में चाकू से वार किया गया। बाइक सवार 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पूर्व के विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घायल का सदर हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मामला सिरीपुर थाना क्षेत्र के मगहा गांव का बताया जा रहा है। इस घटना में घायल मगहा गांव निवासी आश मोहम्मद शाह के 22 वर्षीय पुत्र याकूब आलम का फिलहाल इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि याकूब आलम सब्जी खरीदने के लिए डेरवा बाजार गया था। इसी दौरान बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और उसे घेर लिया। आरोप है कि तीनों युवकों ने उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान एक युवक ने चाकू से उसके पीठ पर वार कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों के सहयोग से इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घायल के बयान पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार घायल याकूब आलम का पहले से कुछ लोगों के साथ विवाद और मारपीट हुआ था, शायद इसी को लेकर इस घटना को भी अंजाम दिया गया है। हालांकि हमले के वास्तविक कारणों का अब तक पुलिस स्तर से आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है। सिरीपुर थाना की पुलिस इस मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही है, साथ ही हमलावरों की पहचान के साथ ही घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का भी पता लगा रही है। बताया जा रहा है कि इसी बीच गोरखपुर जाते समय रामाधार शाह के पुत्र शशि भूषण शाह की मौत हो गई। दूसरे पक्ष से विजय शाह, उनकी पत्नी सीमा देवी और उनके पुत्र अर्जुन कुमार समेत अन्य लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं शशि भूषण शाह की पत्नी मालती देवी भी इस मारपीट में घायल बताई जा रही हैं। घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई है। साथ ही इस पूरे कांड को लेकर जांच पड़ताल किया जा रहा है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। आज शराब तस्करी सहित कई अलग अलग मामलों में पिछले 24 घंटों में पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें एक महिला भी शराब तस्करी करते हुए पकड़ी गई। उत्पाद पुलिस ने कुर्म टोला में कार्रवाई की, जहां कुचायकोट के कुर्म टोला से राकेश रंजन को पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया। इसके पास से लगभग 25 लीटर देशी शराब मिली है। इसकी हीरो मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। यह आरोपी कुचायकोट क्षेत्र का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके शराब और गाड़ी को जब्त कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके अलावा उत्पाद पुलिस ने एक डंगा चेक पोस्ट पर भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक महिला सहित दो लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार किया। ये लोग किंग फिशर स्ट्रॉन्ग बियर 60 बोतल लेकर मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। इसमें एक आरोपी मंटू कुमार और दूसरी महिला ज्योति देवी, ये दोनों उचका गांव के बलेसरा निवासी बताए जा रहे हैं। इनकी गाड़ी और शराब को जब्त कर पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर कुचायकोट थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी तीन प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी राजू मियां उर्फ राजा हुसैन, दूसरा साबिर मियां पिता राजू मियां उर्फ राजा हुसैन और तीसरी एक महिला है। तीनों को कुचायकोट पुलिस ने हत्या के प्रयास में गिरफ्तार कर आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माझागढ़ थाना की पुलिस ने भी चोरी के एक मामले में प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि पहले से आरोपी अरबाज अली पिता अहमद मियां साकिन खवाजेपुर थाना जादोपुर पर चोरी का मामला दर्ज था, तभी इसे माझा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। हथुआ थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में चार प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नामजद प्राथमिकी आरोपी अभिषेक यादव पिता रामबाबू यादव साकिन अटवा दुर्ग थाना हथुआ को गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक दूसरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी नीरज यादव पिता हरेंद्र यादव, दूसरा मैनेजर यादव पिता त्रिभुनाथ यादव और तीसरा हरेंद्र यादव पिता सुखलाल यादव, ये सभी आठवां दुर्ग थाना हथुआ के रहने वाले हैं। इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस तरह से पुलिस ने कुल 31 लोगों को अलग अलग थानों द्वारा गिरफ्तार किया है। इसमें चोरी के मामले, हत्या के प्रयास के मामले, NDPS एक्ट और SC ST एक्ट तथा कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सिद्धवलिया थाना की पुलिस ने सरिया पहाड़ के पास हुई एक ऑटो चोरी के मामले का उद्भेदन किया है। इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि कांड की गंभीरता को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर SIT का गठन किया गया था और विशेष अनुसंधान टीम ने इस कांड का उद्भेदन किया और बताया कि चोरी किए गए ऑटो को रवि कुमार पिता वशिष्ठ यादव साकिन सलारपुर थाना तरवारा जिला सिवान के द्वारा लाइनर का काम किया गया था और धीरज कुमार पिता उपेंद्र राय साकिन बेतवनिया थाना एकमा जिला छपरा के घर बिक्री के उद्देश्य से ऑटो को रखा गया था। गिरफ्तार अभियुक्त धीरज कुमार द्वारा भी पूछताछ के दौरान उक्त ऑटो को बिक्री के लिए अपने पास रखने की बात स्वीकार की गई, जिसके बाद सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि घटना के बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान करते हुए आरोपी विनय कुमार पिता नागेंद्र यादव साकिन सरिया पहाड़ को बेतवनिया से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी के निशानदेही पर अरबाज अली सुखारी यादव, ये दोनों भी सरिया पहाड़ सिधवलिया के ही निवासी हैं, इनको भी पकड़ा गया और इन्हीं के निशानदेही पर रवि कुमार और धीरज कुमार को भी बेतवनिया से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ में इन्होंने चोरी किए गए ऑटो के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इधर बंजारी के चंद्रा सिनेमा के पास एक वेल्डिंग मशीन की चोरी करने का मामला सामने आया। इस मामले में स्थानीय लोगों के अनुसार एक युवक द्वारा वेल्डिंग मशीन चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान वीरेंद्र राम पिता भोला राम निवासी काकड़ कुंड के रूप में की गई है। मौके पर घटना से संबंधित साक्ष्य भी दिखाए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर आज सभी थानों में चौकीदारी परेड का आयोजन किया गया। थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में चौकीदार परेड का आयोजन कर चौकीदारों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क और सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों के गतिविधियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही स्थानीय आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने के संबंध में भी कहा गया। साथ ही शराब तस्करी और अवैध शराब निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। आज पुलिस ने सभी थानों पर गुंडा परेड का भी आयोजन किया। इसमें पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थानों में सूचीबद्ध असामाजिक तत्वों को बुलाकर कड़ी चेतावनी दी गई तथा उन्हें किसी भी प्रकार की आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बच्चों के विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, सब्जी खरीदने गए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, शराब तस्करी और अन्य मामलों में महिला सहित 31 लोग 24 घंटों में गिरफ्तार, ऑटो चोरी कांड में 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
11: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
11: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया।
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
11: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
11: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से सभी सुनने वाले आदरणीय श्रोताओं को नमन है, प्रणाम है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रेडियो रिमझिम परिवार का यह कार्यक्रम आपका संदेश मिला में आप सभी के विचारों पर, सुझावों पर इस कार्यक्रम का प्रसारण हम करते हैं। प्रत्येक रविवार को शाम को 7:45 से और सोमवार को सुबह 7:10 पर अपने जिले के और दूसरे प्रदेशों से, देश के कई भागों से हमारे आदरणीय श्रोताओं का संदेश आता है। यह संदेश मिला कार्यक्रम रेडियो रिमझिम के स्थापना काल से ही हम प्रसारित करते हैं। मेरा मानना है कि हमसे बेहतर हमारे आदरणीय श्रोता हैं जो हमें सुझाव देते हैं, नए नए आयाम गढ़ने की प्रेरणा देते हैं और किस तरह का कार्यक्रम सुनना चाहते हैं अपना सुझाव देते हैं। हम उसी के अनुरूप काम करते हैं। सदैव एक सेवक के रूप में, एक प्रसारणकर्ता के रूप में हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे आदरणीय श्रोता हैं, एक से बढ़कर एक सुझाव देते हैं, हम उनके बातों पर अमल करते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम एक खुला मंच है जिस पर आपके विचारों को लेकर हम अपने कार्यक्रम को आने वाले समय में पिरोते हैं। मेरा मानना है कि आप लोगों का सुझाव जो है मूल्यवान होता है रेडियो रिमझिम परिवार के लिए। जब से रेडियो रिमझिम की स्थापना हुई तब से आज तक जो भी परिवर्तन हुआ है आप लोगों के विचारों से, आप लोगों के सुझावों से। एक दौर था जब रेडियो रिमझिम सुबह 6 से 10, दोपहर 12 से 3 और शाम को 5 से 10 तक केवल अपना प्रसारण करता था, और आज के दौर में 24 घंटे हम अपने प्रसारण को जारी रखते हैं। रेडियो पर सुबह 5 से रात को 11:10 तक और ऐप के माध्यम से 24 घंटे अपना प्रसारण करते हैं। हमारे बहुत सारे आदरणीय श्रोता जो अपने क्षेत्र के हैं, दूर दराज क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए जाते हैं और वहाँ भी रेडियो रिमझिम को ऐप के माध्यम से सुनते हैं। कभी हमारे पास सूचना आता है कि हम जो है लेह लद्दाख में सड़क जो बन रही है वहाँ काम कर रहे हैं, तो कभी तमिलनाडु से, तो कभी विदेशों से हम तक यह सूचना पहुँचती है। हमारे जो ऑनलाइन कार्यक्रम हैं ऑफलाइन कार्यक्रम है, देश विदेश और प्रदेशों से लोग जुड़ते हैं। रेडियो रिमझिम गोपालगंज का एक नाम है। गोपालगंज जैसे शहर में स्थापित होकर आज पूरे दुनिया में अपनी आवाज को पहुंचाता है। इसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय जो है हमारे श्रोताओं का है। वे हमारे पास जब सुझाव भेजते हैं तो हमसे भी ज्यादा जानकार और जो विशेषज्ञ लोग हैं, हम उनसे उन बातों पर चर्चा करते हैं, उनके सुझावों पर अमल करते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। रेडियो रिमझिम में हमारे जो युवा साथी हैं, सहयोगी हैं, उनके बदौलत ही हम अपने प्रसारण को 24 घंटे जारी रख सकते हैं। मनुष्य का शरीर जो है, एक समय आता है कि कभी मनुष्य जो है 16 घंटा 18 घंटा काम करता है। उम्र बढ़ने के साथ यह जो समय है धीरे धीरे कम होने लगता है। शारीरिक क्षमता जो है जवाब देने लगती है। उस समय जो है व्यक्ति का काम करने का समय जो है छोटा होते जाता है। हमें पता है कि जो सजीव है उसे एक ना एक दिन निर्जीव होना है। इस दुनिया में पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव जितने भी सजीव हैं, उन्हें एक ना एक दिन निर्जीव होना है। लेकिन जब तक हम सजीव हैं, कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें, कुछ सामाजिक कार्य करें। सामाजिक कार्य का अर्थ यह है कि हम 5 वृक्षे लगा दिए, 2 गरीब गुरबा के बेटी का शादी में अपना सहयोग दे दिए, मेरे पास कुछ नहीं है तब पर भी नदी के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे, सरकारी भूमि में यदि 10 पौधा भी लगा देते हैं तो यह जो है एक कल्याणकारी कार्य हो जाता है। आज हमारे पूर्वजों ने वृक्ष लगाया था जिसका आनंद हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, ईंधन के रूप में लेते हैं, फल और फूल के रूप में लेते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ न कुछ करते जाएं। घर द्वार मकान जो है हम अपने लिए बनाते हैं, अपने अंश और वंश के लिए बनाते हैं, लेकिन जो सामाजिक कार्य करते हैं वह जो है पूरे समाज के लिए होता है। जिस तरह वर्षा का पानी, सूर्य का प्रकाश, सब

0: देखा है कि झोपड़ियों में खुशियां छलकती है और महलों में आंसू गिरता है। यह जो है कुदरत का करिश्मा है। हर व्यक्ति के पास हर चीज उपलब्ध नहीं रहता है, लेकिन जो जीवन का एक मूल्यांकन है, हमने पाया है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषता देकर ईश्वर जो है जन्म देते हैं। किसी बच्चा में पढ़ाई के प्रति बहुत भूख होता है, तो किसी बच्चे में तकनीकी रूप से काफी सक्षम होते हैं, तो कोई बच्चा जो है स्मरण काफी लंबे समय तक किसी वस्तु का या विषय का रखता है। तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग चीज है। शिक्षा एक प्रकाश है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन शिक्षा के साथ यदि नम्रता विनम्रता नहीं है तो वह शिक्षा बेकार है। शिक्षा हमें दया भाव करने का अवसर देता है, शिक्षा हमें विनम्र बनाता है, शिक्षा हमें दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित करता है। केवल सरकारी नौकरी पा लेना शिक्षा नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षा में हम किसी तरह निकल गए, उसके बाद हम साहेब बन गए, यह जो है कोई ऊंची चीज नहीं है। हमने कई ऐसे अधिकारियों को देखा है जो बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर हैं, लेकिन उनका जीवन सादा, सोच बड़ा होता है और वह जनमानस के कल्याण के लिए सदैव प्रेरित रहते हैं। कई ऐसे अधिकारी भी मिले हैं जो सोचते हैं कि हमें भगवान ने एक अवसर दिया है बेहतर कार्य करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि केवल जितना बिटोर सके। आज जब हम किसी कब्रगाह में या शमशान घाट में 10 मिनट के लिए बैठते हैं, तो वहाँ देखते हैं कितना ही कब्र और कितना लोग जो है इस शमशान पर चले गए, जो करोड़पति थे, अरबपति थे, खरबपति थे, कभी थार से और कभी मोटा मोटा सोना का चैन पहने हुए लोग थे, जो आज मिट्टी में दफन है। लेकिन जो समाज के लिए कुछ कर गया है, उसे लोग आज भी अपने दिलों में रखते हैं। ना उसकी मूर्ति बनी, ना वो उस पर माला चढ़ा, लेकिन उसके किए गए कार्य जो है गांव समाज जो है अपने दिलों में रखता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसे याद करते हैं। तो मेरा मानना है, जो जितना में है यदि कुछ बेहतर करता है तो ईश्वर का आशीष जो है उसे मिलता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों का बहुत सारा संदेश भी आया है। मेरे साथ सोनू जी बैठे हैं, जो प्रत्येक सप्ताह आपका संदेश मिला में बैठते हैं, और उनके पास आपका संदेश आया है। तो मैं वादा करता हूँ कि पूरे ईमानदारी और सच्चाई से उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो पहला प्रश्न जो आया है, सोनू जी पढ़ रहे हैं।
1: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुँचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश मेरे पास पहुँचा हुआ है उमेश प्रसाद जी का गोपला मठ से। सर नमस्कार, रेडियो रिमझिम को लंबे समय से सुनता हूँ। मुझे सुबह का भजन और हालचाल काफी अच्छा लगता है। पिछले दिनों लगातार 4 दिनों तक बारिश होता रहा। मेरा आग्रह है कि इस तरह की आपदा की सूचना मौसम विभाग से या घटित होने से पहले रेडियो से दिया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय उमेश बाबू, आपके परिवार को और पूरे गोपला मठ ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप रेडियो रिमझिम को लगातार और लंबे समय से सुनते हैं, इसके लिए हम अपनी पूरी टीम के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ प्रसारित कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं, यह हमारी उपलब्धि है और आप लोगों के सुझाव के बल पर ही कार्यक्रमों का क्रिएशन या निर्माण जो है हम कर पाते हैं। सुबह के समय में भजन से रेडियो रिमझिम की आकाश होती है और उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दिन के अनुसार कार्यक्रम बदलते रहते हैं, जो पुराने हुए उनके जगह पर नए कार्यक्रम आ जाते हैं और समय के साथ रेडियो रिमझिम अपने स्वरूप में स्वभाव

0: में बहुत सारा परिवर्तन लाया है और हाल चाल के बारे में आपको पता ही है कि रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे रेडियो रिमझिम पर प्रसारित होता है और हाल चाल गोपालगंज के नाम से यूट्यूब पर भी इसको रात के 12 बजे के पहले हमारी टीम जो है डाल देती है, ताकि जो रेडियो पर नहीं सुन सके वह हालचाल गोपालगंज जो है अपने मोबाइल पर अपने सुविधा के अनुसार सुन सके। इसके अलावा जिन कार्यक्रमों की बारे में आपने बताया उन पर हम विचार कर रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया जाए, और आपने बड़ा ही मनमोहक एक सुझाव दिया है कि मौसम विभाग से सूचना लेकर किसी भी आपदा की सूचना दी जाए। तो हमें याद है 19-20 में भूकंप आया था, तो उस तरह की सूचना जो है रेडियो रिमझिम लगातार 3 दिनों तक चलाया। जिला अधिकारी महोदय उस समय श्री कृष्ण मोहन जी थे, उनका भी आदेश आया था कि मौसम विभाग से लेकर इस तरह की सूचना दी जाए। यह जो 4 दिनों का लगातार बारिश हुआ और तेज हवाएं चली, इसकी भी सूचना आपदा विभाग से आपके मोबाइल पर तो आता ही होगा। हम कोशिश करेंगे कि रेडियो रिमझिम पर भी इस तरह की सूचना हम प्रसारित करें। बहुत अच्छा सुझाव है आपका, क्योंकि आज के दौर में इतने लंबे समय में घर घर की आवाज जो है रेडियो रिमझिम 90.4 बन चुकी है, और आप लोग भी बेहिचक जब अपना कोई बात या सुझाव देते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं कि आगे वाले समय में उसका अनुपालन हम करें। तो हम इस पर विचार करेंगे और आपदा विभाग से मौसम विभाग से हम संपर्क करेंगे कि आने वाले समय में यदि किसी तरह की कोई आपदा आती है तो हम भी सूचना देते रहें। वैसे बाढ़ का समय है, आप लगातार हालचाल के माध्यम से इसकी तत्कालिक सूचना प्राप्त करते रहते हैं। उसी तरह कोई भी घटना हो उसकी सूचना हम देते रहेंगे, और आपका मूल्यवान सुझाव हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हम इसका अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे और आने वाले समय में इस पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है गोपालगंज वार्ड नंबर 14 से राजीव जी का, लिखे हुए हैं, सर नमस्कार, बहुत दिनों तक सोचने के बाद व्हाट्सएप संदेश भेज रहा हूँ। मेरा घर सासा मूसा बाजार के नजदीक पड़ता है, मकान बनाकर रह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी गोपालगंज में पढ़ते हैं। आपके यहाँ से पटना से प्रादेशिक समाचार और राष्ट्रीय समाचार का आवाज बहुत धीरे आता है, बाकी सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय राजीव जी, आपका संदेश मिला, मैं आपका संदेश मिला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पूरे परिवार को और आपके वार्ड वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से नमन करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा के लिए आप गांव जवार से थोड़ा दूर हो गए। जीवन में शिक्षा का बड़ा ही महत्व है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि शिक्षा जो है एक रोशनी है, एक प्रकाश है, जो व्यक्ति को अंधेरे से उजाले के तरफ ले जाती है। लेकिन इसके साथ यदि संस्कार हो, विनम्रता हो, दया हो और दूसरे के प्रति प्रेम हो तो यह अनमोल बन जाता है। हम शिक्षा चाहे कितना ही ले लें, लेकिन व्यक्ति के अंदर दया नहीं है, विनम्रता नहीं है तो वह शिक्षा आधी अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा ताकत जो है धैर्य होता है, सहनशीलता होता है, दूसरे के प्रति आदर और सम्मान होता है, और इस पर अमल भी करना चाहिए। जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, विरोधी हैं, लेकिन उसके बीच में तरक्की भी भी करना है, प्रगति भी करना है। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, शहर हो या गांव हो, आप जमीन लिखवा लिए, कागज पत्र सब ठीक है, लेकिन जब मकान बनाने जाइएगा तो जितने सोए हुए भूत हैं सब जग जाएंगे, अगल बगल नापी शुरू हो जाएगा, कोई ईंट आने का रास्ता में व्यवधान डालेगा तो कहीं बालू में परेशानी होगी। लेकिन तमाम कठिनाइयों के बाद यदि आप मकान बना लेते हैं तो उसमें जो सुख और सुकून मिलेगा वह जीवन में कहीं नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि आप कितना हूँ जगह घूम लें, कितना हूँ पहाड़ और नदियों के किनारे चले जाएं, लेकिन जो सुख और शांति अपने मकान में या अपने घर में मिलता है वह जीवन में कहीं नहीं मिलता है, और वह जो है नींद भी कहीं नहीं मिलता है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो आदरणीय श्रोता बंधु, आपने जब इतना बड़ा त्याग किया, बच्चों के पढ़ाई के लिए गांव छोड़कर शहर में आ गए हैं, तो उनके पढ़ाई के साथ साथ जो पारिवारिक संस्कार है उसे जरूर दीजिए। और रेडियो रिमझिम को आप लगातार और लंबे समय से सुनते हैं और संदेश दिया, इसके लिए एक बार पुनः हम धन्यवाद देते हैं। आपने सुझाव दिया है कि प्रादेशिक समाचार और राष्ट्रीय समाचार सुनने में आवाज़ जो है धीमी हो जाती है, तो आपको बताते चलें, प्रादेशिक समाचार हमें पटना से मिलता है और राष्ट्रीय समाचार नई दिल्ली से प्राप्त होता है, नई दिल्ली आकाशवाणी से। तो वह जिस तरह जिस स्वरूप में आता है उसी तरह उसी स्वरूप में हम आप तक पहुंचाते हैं। जब वहाँ आवाज कम होती है तो हमको कम मिलता है। हमने इसके लिए आकाशवाणी पटना को संदेश दिया है कि वहाँ यदि कहीं कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाए। उसकी प्रतिक्रिया अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और हमारा काम यही है कि उधर से लेकर आप तक पहुंचाना, और जो हम प्रसारित करते हैं उसके आवाज में यदि कहीं कोई कमी है तो हम तो दूर कर सकते हैं, लेकिन जो तीसरे से लेकर दूसरे को देना है उसमें हमारा बस नहीं चलता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह त्रुटि बहुत जल्द खत्म होगी और आपको प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार भी रेडियो रिमझिम के लेवल पर प्राप्त होगा। आपने सूचना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है, सकीना खातू ठावे सेमरा से भेजी है। रेडियो रिमझिम टीम को सलाम, योर वॉइस योर चॉइस, हेलो माय चॉइस, एसएमएस फरमाइश, काफी अच्छा लगता है। मेरा गुजारिश है कि जो 12 बजे कार्यक्रम शुरू होता है वह 11 बजे किया जाए और सप्ताह में 2 दिन गाने फरमाइश करने का मौका दिया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा सुझाव आपका है, योर वॉइस योर च्वाइस, आपकी पसंद आपकी गीत कार्यक्रम में। सप्ताह में एक दिन इसलिए रखा गया है कि हमारे श्रोताओं की संख्या हजारों में नहीं लाखों में होती है। कई हमारे श्रोता जो है दूसरे प्रदेशों से हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, जो वहाँ के निवासी हैं, उन्हें किसी न किसी माध्यम से रेडियो रिमझिम का ऐप मिल गया और वे भी फरमाइश करते हैं। तो जो हमारे आरजे हैं वह उनकी फरमाइश भी पूरी करते हैं, क्योंकि पूरा भारतवर्ष एक है और कहीं से कोई फरमाइश करता है उसे पूरा करना हमारे आरजे का या हमारी टीम का यह नैतिक धर्म है। इसलिए इस कार्यक्रम में सप्ताह में एक व्यक्ति एक बार अवसर दिया गया है, ताकि सभी लोगों को बारी बारी अपनी बात रखने का अवसर मिले। हम नजदीक के हैं या दूर के हैं, रेडियो रिमझिम सबका है। जिस तरह हवा, सूर्य का प्रकाश और वर्षा का पानी, यह सबका होता है, उसी तरह रेडियो रिमझिम जो भी श्रोता हमें सुनते हैं, अपनी फरमाइश करते हैं, हमारे आरजे जो है उसे पूरा करते हैं। तो अभी तत्काल में यह संभव नहीं है, सप्ताह में एक दिन ऑनलाइन कार्यक्रम में आप जो है अपनी फरमाइश पूरी करा सकती हैं। दूसरी बात यह है कि हेलो माई च्वाइस कार्यक्रम में आप जो है बुधवार, शुक्रवार और सोमवार को अपनी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं, उसमें इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और बहुत सारे लोग कराते भी हैं। और जो रेडियो रिमझिम परिवार की बच्चियां हैं आरजे के रूप में, वे उनका रिकॉर्डिंग करती हैं, उस पर किसी तरह का बेंड नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन प्रोग्राम है एसएमएस फरमाइश, योर वॉइस योर च्वाइस, उसमें इस तरह का बंधन हम लोग आप लोगों के सुझाव से लगाए हैं। हम लोग कोई नियम बनाने वाला बहुत बड़ा नियम करता नहीं है, लेकिन श्रोताओं का ही सुझाव आया था कि सर सप्ताह में एक व्यक्ति को एक बार मौका दिया जाए, और यह हमारी मैनेजमेंट टीम को सुझाव पसंद आया और उसी के आधार पर आज लंबे समय से इन सब कार्यक्रमों का बंधन हम लोग बनाए हैं। वैसे अन्य कार्यक्रम भी सुने, उसमें भी भाग लें, काफी अच्छा लगेगा जब समाज के हर वर्ग हर उम्र के लोग अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं तो काफी अच्छा लगता है, क्योंकि रेडियो रिमझिम परिवार आप सबका है और हम लोग आप सबके सेवक हैं। और हम ऊपर वाले मालिक को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को आवाज के माध्यम से सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है मीरगंज लोहर पट्टी से समीर कुमार जी का। सर नमस्कार, रेडियो रिमझिम का प्रत्येक कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। समय समय पर जो नाटक के रूप में स्वच्छता कार्यक्रम, विक्रम बेताल और सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हेलो क्यूज कंटेस्ट का समय बढ़ाया जाए और कार्यक्रम को नियमित चलाया जाए। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम कभी चलता है कभी नहीं चलता है, इसे नियमित किया जाए। स्वच्छता का तीन ही भाग सुनाया गया, अगला भाग भी सुनाया जाए। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय समीर कुमार जी, आपके पूरे परिवार को, लोहर पट्टी ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने अपने संदेश में गागर में सागर भर दिया। लगभग आप रेडियो रिमझिम को लंबे समय से सुनते हैं, क्योंकि हमें जो सुनता है वही हमारे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से परिचर्चा कर सकता है, उन बातों को बता सकता है। और आपके संदेश में लगभग लगभग सभी कार्यक्रम जुड़ गए। हम आपको बारी बारी बताते चलें कि समय समय पर रेडियो रिमझिम स्वच्छता के विषय में जानकारी देता है। स्वच्छता जो है 90% बीमारियों को खत्म कर देता है। यदि हम जिस बिछावन पर सोते हैं उसे साफ रखें, जिस कपड़े को पहनते हैं उसे साफ रखें, तो वातावरण जो है धीरे धीरे साफ सुथरा होते जाता है। चीन देश की एक कहावत है कि यदि प्रत्येक नागरिक अपना अपना दरवाजे के सामने सफाई करे तो पूरा गांव और शहर जो है स्वच्छ हो जाएगा। इसी बात को प्रेरित करने के लिए स्वच्छता कार्यक्रम रेडियो रिमझिम पर चलाया गया। और यह हम लोगों का सामाजिक दायित्व भी है कि जब हम किसी बात को एक आदमी से कहेंगे तो एक सुनेगा, लेकिन रेडियो के माध्यम से असंख्य लोग जो है उन बातों को सुनेंगे। दूसरा, बच्चों के लिए विक्रम बैताल हमने शुरू किया है, जो बच्चे जो है काफी पसंद करते हैं। छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक मजबूत करने के लिए इस तरह की बातों को बताया जाता है। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का समय जो है हमें लगता है कि पर्याप्त है। प्रत्येक रविवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, यानी डेढ़ घंटा का यह कार्यक्रम होता है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें उम्र बंधन नहीं है। आप चाहे आठवीं कक्षा में पढ़ते हो, चाहे एमए किए हो, किसी भी कक्षा में पढ़ते हो या पढ़ चुके हो, इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। एक हमारे श्रोता थे सिवान के, जो आजकल जो है फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं, और उनका उम्र भी 28-30 साल से कम नहीं होगा हमें जो उनकी आवाज से लगता है, लेकिन वे भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं। हमें भी काफी अच्छा लगता है। वह जो है ब्लाइंड है, अंधे हैं, फिर भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और आगे आपने लिखा है सेहत सही लाभ कई। यह कार्यक्रम पिछले 2 वर्षों से रेडियो रिमझिम पर चल रहा है, उसका विज्ञापन चलता है, एपिसोड चलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि गोपालगंज रेडियस के 15 किलोमीटर में हमारे जो टीम के लोग हैं वह गांव-गांव में जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से स्वास्थ्य संबंधी परिचर्चा करते हैं, फोटो खींचते हैं और उसे रेडियो रिमझिम के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डाला जाता है कि आज जो है फलाना गांव में गए थे, लोगों से बातचीत हुआ, और लोग भी फोटो रेडियो रिमझिम के नाम पर खिंचवाते हैं। क्योंकि रेडियो रिमझिम इतने लंबे समय से अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए और नैतिकता के लिए लोगों के बीच लोकप्रिय है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए हम काम करते हैं, यदि उनका भरपूर समर्थन मिलता है तो काम जो है आगे बढ़ जाता है। तो सेहत सही लाभ कई का जो एपिसोड है वह जो है जितना बना है सप्ताह में 2 दिन चलाया जाता है, कभी कभार स्पेशल कार्यक्रम आ जाता है तो उसको रोक कर उसे चलाया जाता है। अनिश्चितता की कोई बात नहीं है, इसे नियमित चलाया जाएगा। और स्वच्छता का 3 ही एपिसोड हम लोग बनाए हैं जिसे हम लोग चला दिए हैं। यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो उसका जो है रिपीट पुनरावृत्ति हम कर देंगे, हमें भी काफी अच्छा लगेगा। और सबसे अच्छी बात है समीर जी कि आप जो है प्रत्येक कार्यक्रम के बारे में अपनी जो टीका टिप्पणी की है वह भी अच्छा लगता है। जो रेडियो रिमझिम को सुनेगा वही इसके कार्यक्रमों के बारे में अपनी बात को रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है सगीर आलम जी का सांसा मूसा पुरानी बाजार से। पूरे रेडियो रिमझिम टीम को मेरा सलाम है। रेडियो रिमझिम को ऐप से सुनता हूं, शो में जुड़ता हूं। मेरा सुझाव है कि पर्यटन पर भी कार्यक्रम बनाया जाए। पहले बिहार के प्रत्येक जिले की कहानी बताई जाती थी, उसी तरह अपने देश की सभी राज्यों की कहानी बताई जाए, इससे बहुत कुछ जानकारी हासिल हो पाएगा। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
0: आदरणीय सागिर आलम जी, आपके पूरे परिवार को, सांसा मूसा बाजार वासियों को, ग्राम वासियों को, रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जो कार्यक्रम आज से 15 साल पहले चला था और लगभग उसमें 30 जिले की कहानी रेडियो रिमझिम के माध्यम से बताया गया था, वह आज भी आपको याद है। हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम जो सुनता है वह हमारा सच्चा साथी है। और बताइए 15-16 साल पहले चले कार्यक्रमों की 2026 में आज चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप लगातार और लंबे समय से रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। यह बात सही है कि प्रत्येक जिले की कहानी, वहाँ का वेशभूषा, खान पान, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का लिंग जेंडर, कितना स्त्री कितना पुरुष, वहाँ के उद्योग धंधे के बारे में उस एपिसोड में बताया जाता था। आपका संदेश सुनने के बाद हमें भी याद आ गया। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में इस तरह का एपिसोड बनाया जाए जो ज्ञानवर्धक हो, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक हो, तो इस तरह का कार्यक्रम हम चला सकते हैं। आपने इतना महत्वपूर्ण सुझाव दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाला आपका संदेश मिला कार्यक्रम में इसी तरह का विचार भेजते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है धनेश कुमार चौहान जी का, सलेमगढ़ बाजार कुशीनगर से। सर नमस्कार, आपका संदेश मिला में यह मेरा पहला संदेश है। हमारे क्षेत्र के सभी लोग रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, पूरे गोपालगंज की सूचना हमें भी मिलती है। हम गीतों का कार्यक्रम बेहद पसंद करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कार्यक्रम में जुड़ते हैं। गुजरात में रहते हुए भी ऐप से सुनते हैं। हेलो क्यूज कंटेस्ट में जुड़ने का नंबर बताया जाए, संदेश मिला मुझे काफी अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही मेरे पास अभी कई संदेश हैं, लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय धनेश जी, आपके परिवार को, आपके सलेमगढ़ कुशीनगर के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है जो मन और चित प्रसन्न हो गया। आदरणीय चौहान साहब, सलेमगढ़ बाजार और गोपालगंज जिले में कोई खास अंतर नहीं है, बथना कुटी और सलेमगढ़ में भी कोई अंतर नहीं है, हम लोग सब एक ही हैं। अरे, जिला बदल गया, प्रदेश बदल गया, लेकिन एक दूसरे के यहाँ आना जाना, खान पान सब तो एक ही है। आपका संदेश जो है, यह पहला संदेश है, धीरे धीरे और संदेश आएगा। कम से कम एक पहला कदम तो आप उठाए। आपका संदेश मिला कार्यक्रम जो है, कई बार हमने कहा है, एक खुला मंच है, इसमें सभी लोगों के विचार को आना चाहिए। हम कोई बहुत बड़े दार्शनिक या विद्वान व्यक्ति नहीं हैं, एक आम आदमी है। आप ही लोग के परिवार और घर से निकला हुआ व्यक्ति है। काम करते करते जीवन का एक अनुभव हो गया, एक प्रसारणकर्ता के रूप में, और हम चाहते हैं कि आप लोगों का विचार और सुझाव हमको मिलता रहे। हमारे अंदर भी शिक्षा की भूख रहती है कि और कुछ नया सीखे, और कुछ नया सीखे। किसी महान दार्शनिक ने कहा है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है, उसे कुछ रोज नया सीखना चाहिए, चाहे वह सीखने की कला अपने से जूनियर बच्चों से हो या सीनियर लोगों से हो, लेकिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। जीवन में जब व्यक्ति सीखना छोड़ देता है, बोलना छोड़ देता है, चलना छोड़ देता है, तो वह जो है मूरत के रूप में हो जाता है। उम्र चाहे कोई भी हो, व्यक्ति को हमेशा सक्रिय रहना चाहिए। आपने कहा कि आपके क्षेत्र के लोग सुनते हैं, यह जानकर काफ़ी अच्छा लगा, और ऑनलाइन और ऑफलाइन आप भी जुड़ते हैं, यह तो और अच्छी बात है। रेडियो रिमझिम के प्रसारणकर्ता होने के नाते हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोग कार्यक्रमों में जुड़े। और तीसरी जानकारी आपने दी कि आप गुजरात में रहते हुए रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, यह सुनकर अच्छा लगा। लेकिन एक आग्रह करेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने क्षेत्र के हो या वहाँ के हो, उन्हें भी बताइए कि हमारे गांव जवार में रेडियो रिमझिम है, जो ऐप के माध्यम से आप गुजरात में सुन सकते हैं, और दूसरों को भी बताइए कि गूगल के प्ले स्टोर में रेडियो रिमझिम का ऐप है, आप सुने। इसके अलावा प्रतिदिन आप देखते होंगे रेडियो रिमझिम के नाम से फेसबुक है, उस पर जो भी हम लोग गांव-गांव में घूम घूम के सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम करते हैं उसका तस्वीर भी हम लोग डालते रहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि रेडियो रिमझिम केवल स्टूडियो के अंदर बैठकर बोलता नहीं है, गांव और समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके करीब भी जाता है। और चौथी बात, आप बोले कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में जुड़ने का नंबर क्या है, तो इसके पहले मैं बताते चलूं, रेडियो रिमझिम का फेसबुक जब आप खोलिएगा तो वहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है और जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, कब चलते हैं, उनका नंबर क्या है, वह सब लिखा गया है लाल रंग में कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का नंबर यह है, एसएमएस फरमाइश का नंबर यह है, यानी जो जो कार्यक्रम है सबका सीम जो है अलग है और नंबर अलग है, उस नंबर पर फोन करके आप जुड़ सकते हैं। चूंकि आपका संदेश मिला में आपने प्रश्न उठाया है कि हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का नंबर बताया जाए, तो इसका नंबर है, नोट किया जाए, 800-299-4921। एक बार हिंदी में बोल देते हैं, 800-299-4921। तो इस नंबर पर केवल रविवार को दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच आप फोन कर सकते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, सोनू जी का इशारा है कि समय की आवृत्ति हम पार कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत रहकर कार्यक्रम को करना है, तो आपका संदेश मिला कार्यक्रम से अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और बेहतर समाज निर्माण में अपना योगदान देते रहिए। आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है, रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84-14-28 तथा व्हाट्सएप नंबर है 98-527-88-291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है, सुनो दिल से। नमस्कार।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
8: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे.जी. शरण एम.डी. फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे.जी. शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
2: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा,
7: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
6: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
8: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
3: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
2: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान।
4: इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
5: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहां भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से IED विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
6: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
4: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देशभर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
7: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात। हिंदुस्तान ने लिखा है इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है। भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद बेटों से आगे रही। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है। गुजरात के मेहसाणा जिले में पेंशन के पैसों से 75 वर्षीय दिनेश भाई और उनकी पत्नी देविंद्रा बेन ने रेगिस्तान में तैयार किया जंगल। 5 बीघे में 5,000 से ज्यादा पेड़, हजारों परिंदों का घर बना।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
9: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
10: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
9: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
10: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
9: कहाँ?
10: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता। ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
11: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
12: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
11: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
12: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
11: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
12: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
13: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
13: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
15: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
16: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
15: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
16: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
15: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
17: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
18: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
17: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
18: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
17: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
18: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99349-51551 पे।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
4: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
8: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
9: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
8: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
9: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
8: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
9: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में।
10: ऑनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AM पर।

0: गंडक नदी की बाढ़ से तटबंधों को हुए नुकसान के बाद लापरवाही के मामले में 7 अभियंताओं को निलंबित किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए कमिटी बनाई जाएगी। और रेलवे ने पटना के मोकामा में गंगा नदी पर बने नए रेल पुल ट्रैक पर आज से रेल परिचालन को मंजूरी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित 7 जिलों में फसल क्षति के मुआवजे के लिए नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। प्रभावित जिलों के जो किसान अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे इस चरण के तहत आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग की ओर से आवेदन की प्रक्रिया और समय सीमा जल्द ही निर्धारित की जाएगी। इस चरण के तहत पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित किसान आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि मुआवजे के पहले चरण के तहत प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर थी। इधर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में फसल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने कहा कि नुकसान की तत्काल भरपाई की जाएगी।
1: गोपालगंज हम परिवार का जिला है और हमने देखा पानी उतर गई है और भी उतर रही है। जो नुकसान हुआ है सरकार सजगता से भरपाई के लिए तैयार है। हमारे शासन प्रशासन पूरी सेवा के लिए तत्पर है और उसका असर भी दिखाई पड़ा है। तो आपदा से लड़ने के लिए हम तैयार हैं और आपदा से हुए नुकसान का सरकार भरपाई करेगी।
0: गंडक नदी में अचानक अत्यधिक मात्रा में पानी आने और तटबंधों को हुए नुकसान के बाद जल संसाधन विभाग ने लापरवाही के मामले में 7 अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही मुख्य अभियंता मनोज कुमार गुप्ता के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इधर सारण जिले के मकेर थाना क्षेत्र में बाढ़ राहत सामग्री वितरण के दौरान लोगों पर पिस्तौल तानने वाले थाना अध्यक्ष संग्राम कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में गंडक समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आ रही है। सारण के रेवा घाट में गंडक नदी का जलस्तर 50 सेंटीमीटर नीचे आ गया है। जल संसाधन विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान कोसी, गंडक, बागमती और गंगा सहित कई नदियां खतरे के निशान से नीचे आने की संभावना है। वैशाली के लालगंज में भी गंडक नदी का जलस्तर में कमी आई है। इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पानी निकल रहा है। लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर गंगा समेत अन्य नदियों के जलस्तर में अब भी बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। भागलपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बियाडा, बाबूपुर और झानवी घाट से कार्गो सेवा पर रोक को अगले 3 दिन बढ़ा दिया गया है। हालांकि पैदल यात्रियों के लिए यह सेवा पहले की तरह जारी रहेगी। जलस्तर में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव करने का निर्देश दिया है। वहीं प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन का कल अंतिम दिन है। अब तक 33 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 19 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, जबकि 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 14 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को की जाएगी। 9 अक्टूबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि मतों की गिनती 27 अक्टूबर को की जाएगी। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवल किशोर यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के कई वरिष्ठ नेता नामांकन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मोकामा विधायक अनंत सिंह के पार्टी लाइन के विपरीत जन सुराज प्रत्याशी को समर्थन दिए जाने के मामले में शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंच रहे हैं। विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के बीच श्री नवीन का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना में एनडीए के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर रणनीति बनाएंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने को लेकर कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी सातवां वेतनमान देने पर खर्च का आकलन करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग 2-3 दिन के भीतर इसकी समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करेगा। श्री तिवारी ने सातवें वेतनमान को लेकर शिक्षकों से अनशन समाप्त करने की अपील भी की है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के तबादले को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि ऐच्छिक तबादले में शिक्षकों को पदभार ग्रहण करने की बाध्यता नहीं है। श्री तिवारी ने कहा कि जिन शिक्षकों को नए विद्यालय में जाने में समस्या है वे पुराने विद्यालय में ही रह सकते हैं। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवल किशोर चौधरी को राज्य स्वास्थ्य समिति का कार्यपालक निदेशक बनाया गया है। इससे पहले वे नगर विकास और आवास विभाग के विशेष सचिव थे। वहीं आईएएस अधिकारी अमित कुमार पांडे को राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2017 में शुरू होने के बाद से अब तक आयोजित 16 पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों से जन्म तिथि बदलने वालों पर कार्रवाई करते हुए 1,66,000 आधार कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने पिछले 3 महीनों में ये आधार कार्ड रद्द किए हैं। प्राधिकरण द्वारा अब फर्जी आवेदन खारिज करने की बजाय सीधे मूल आधार नंबर ही बंद किया जा रहा है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने कहा है कि मध्यमा परीक्षा 2027 में मधुबनी जिले से विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मध्यमा परीक्षा 2026 में मधुबनी से राज्य में सबसे अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। श्री झा ने मधुबनी जिले में संस्कृत उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक में परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तैयारियों की समीक्षा की। रेलवे ने पटना के मोकामा में गंगा नदी पर बने नए रेल पुल ट्रैक से परिचालन की मंजूरी दे दी है। राजेंद्र सेतु के समानांतर निर्मित इस नए रेलखंड पर आज से ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू हो रहा है। रेल संरक्षा आयुक्त गुरु प्रकाश ने बताया कि पहले चरण में पटना बेगूसराय बरौनी मार्ग की 24 से 30 पैसेंजर एक्सप्रेस और सुपर फास्ट ट्रेनों को इस नई रेल लाइन से चलाया जाएगा। इस रेल पुल के चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार को रेल मार्ग से जोड़ने में एक अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो गया है। मौसम विभाग ने कल से कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस दौरान उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है। इस बीच विभाग ने आज पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है।
3: दिनांक 5 अक्टूबर को राज्य के पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन तक प्रदेश के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। इससे सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास होगा। सीतामढ़ी जिला पुलिस ने 25,000 के इनामी अभियुक्त डब्लू राउत उर्फ डबला को गिरफ्तार कर लिया है। डबला के विरुद्ध संगीन मामलों में विभिन्न थानों में 9 से अधिक प्राथमिकी दर्ज है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छापेमारी कर विभिन्न ब्रांड की 2,600 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। शेखपुरा जिले के मेहूस थाना क्षेत्र अंतर्गत बरबीघा मेहूस मुख्य सड़क मार्ग पर भदरथी गांव के पास पुलिस ने जांच अभियान के दौरान विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अंडर 19 वीनू मानकर ट्रॉफी के लिए बिहार पुरुष टीम के चयन शिविर को मंजूरी दी। यह शिविर कल से शुरू हो गया है। भागलपुर में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से राज्य स्तरीय अंतर विद्यालय लॉन टेनिस ओपन चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चयनित खिलाड़ी अगले सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस चैंपियनशिप में भाग लेंगे। दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में परीक्षा पास अभ्यर्थियों का पटना के गर्दनी बाग में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा रद्द करने का नोटिस वापस लेने और तत्काल शारीरिक परीक्षा की तारीख जारी करने की मांग की है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पटना मुजफ्फरपुर रैपिड रेल के लिए अध्ययन शुरू, 1 घंटे में तय होगी दूरी। अखबार लिखता है, एनसीआरटीसी प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट तक पहुंच के विकल्प पर भी अध्ययन करेगा। दैनिक जागरण लिखता है, बदलेगी व्यवस्था, जीएसटी अधिकारियों के पास अब नहीं होगा किसी की गिरफ्तारी का अधिकार। दैनिक भास्कर ने परिषद चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, परिषद चुनाव में महागठबंधन टूटा, 5 सीटों पर राजद कांग्रेस आमने सामने। आज अखबार ने एशियन गेम्स से जुड़ी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, गुड बाय जापान, अब कतर में मिलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित जिलों में फसल क्षति के मुआवजे के लिए दूसरे चरण में किसानों से नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। जल संसाधन विभाग ने गंडक नदी की बाढ़ से तटबंधों को हुए नुकसान के बाद लापरवाही के मामले में 7 अभियंताओं को निलंबित किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। और रेलवे ने पटना के मोकामा में गंगा नदी पर बने नए रेल पुल ट्रैक पर आज से रेल परिचालन को मंजूरी दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 90765650।
7: ठक ठक
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
10: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
10: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
10: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
12: राधा तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
13: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
14: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
15: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
14: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
16: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
17: Jab phone din de bajte hai to kehte hain hello.
18: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8009294911। जी हाँ 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
19: हेलो
20: जी, बहुत सर रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
19: थैंक यू, नमस्ते आपको।
20: जी नमस्ते,
19: अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
20: जी अनिल जी, क्या हाल चाल है?
19: बढ़िया है, अपना बताइए।
20: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
19: गाना सुना दीजिएगा पवन सिंह का।
20: कौन सा बता दीजिए?
19: चांदना सुनर लागेला।
20: ओके, और ये गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
19: आपकी पूरी टीम को और जितने लिसनर सुन रहे हैं सबको।
20: अनिल जी वैसे क्या हो रहा था अभी?
19: जी काम पे हैं।
20: क्या करते हैं वैसे आप?
19: दवा दुकान में जॉब करते हैं।
20: अच्छा, मेडिसिन लाइन में है। चलिए बहुत अच्छी की बात है।
19: ठीक है,
20: चलिए अनिल जी तो आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
19: जी धन्यवाद
20: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम, मैं तुन शर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी नमस्ते, कैसे हैं?
1: अच्छे हैं मैम, गाना सुनना चाहते हैं मैम।
0: जी जी बिल्कुल, गाना सुनवाएंगे। पहले ये बता दीजिए कि कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बेंगलोर से बोल रहे हैं मैम।
0: अच्छा जी, तो और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा?
1: ठहरे हुए पानी में कंकर हमारे सावर।
0: ओके, तो ये क्या आप हेलो मैच में पहली बार कॉल किए हैं?
1: नहीं मैम, पहले भी।
0: वैसे अपना नाम क्या बताया?
1: मैं तुन शर्मा।
0: अच्छा जी,
1: बेंगलोर से जुड़े हैं।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है। वैसे क्या करते हैं आप?
1: फर्नीचर का काम करते हैं मैम, और हम बराबर रेडियो सुनते रहते हैं। हमारा रोज रेडियो 9 बजे से 9 बजे रात तक चलते रहता है। आपका सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
0: तो आप ये रेडियो से सुनते हैं या फिर ऐप के माध्यम से?
1: ऐप के माध्यम से, मोबाइल से सुनते हैं मैम।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, अभी रेडियो तो इधर नहीं है, मोबाइल के ऐप से सुनते हैं। गाँव में रहते हैं तो रेडियो पे तो आपका रेडियो नहीं, हमारे उधर चलता है।
0: जी जी,
1: तो मोबाइल से ही सुनते हैं, ऐप से।
0: ठीक की बात है। तो कार्यक्रम आपको कैसा लगता है रेडियो रिंगिम का?
1: अच्छा लगता है मैम। हेलो माई चॉइस में मैं कॉल कितने बार किए तो आप, जब मैम भारती मैम चेंज हो जाता है तो आपने मेरा गाना बजाते ही नहीं।
0: अच्छा जी, ऐसा नहीं है।
1: 2-3 दिन में भेजा मैसेज आपको गाना, सप्ताह में एक ही बार हम जुड़ते हैं मैम, फिर भी हमारा गाना नहीं बजा। आज भी मैं भेजा हूँ, आज भी बजेगा कि नहीं पता मैं।
0: नहीं नहीं, बारी बारी से सबका बजता है।
1: जी मैम, हेलो।
0: हाँ जी, ये भी बोल रहे हैं कि बारी बारी से सबका गाना बजता है।
1: 12 बजे से शो चालू होता है मैम, 12:05 तक भेजते हैं, तो 2:30 बजे 3 बजे तक तो बजना मांगता है ना, 2-3 घंटे में, तो उतने में भी नहीं बज पाता है ना। जब मैम चेंज हो जाता है, आप आ जाते हैं, तो फिर आप आगे पीछे हो जाता है मैसेज, तो देख नहीं पाते हैं, बजा भी नहीं पाते हैं। जो जुटता है उसको बजा देते हैं, जो पहले से जुटा रहता है उसको बजाने। मेरा नाम मैम मिथुन शर्मा है, बिहार के रहने वाले हैं।
0: अच्छा, तो अभी आप मैसेज किए हैं?
1: जी मैम, आपका आवाज आने में, बोलिए।
0: जी जी, तो अभी आप फरमाइश किए हैं? फरमाइश,
1: हाँ हम हेलो मैं चॉइस में फरमाइश किए हैं।
0: अच्छा जी, चलिए।
1: तो अभी हमको बताया रिकॉर्ड हो रहा है, तभी मैं फिर कॉल लगाया, तो अभी एक ही बार में लग गया। उस दिन में लगाते रहा तो आधा घंटे से लग भी नहीं किया।
0: चलिए, और ये गाना जो बताया वो डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
1: मेरा दोस्त है यहाँ पे, सभी दोस्त और जितना सुनने वाले हैं, सभी दोस्तों के लिए।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं आपके गाने को।
1: ओके मैम
0: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 एफएम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इसमत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
9: सलाम अलैकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम
9: जी, हम जाकिर हुसैन, बिहार, गोपालगंज, जादवपुर से।
10: जी जी, कैसे हैं आप?
9: मैं ठीक हूँ, अपना बताइए मैम।
10: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
9: जी मैम, तो गाना सुनना चाहते हैं मैम?
10: जी बिल्कुल, बता दीजिए
9: मैम। बहुत देर से कॉल लगा रहे थे, कॉल नहीं लगा।
10: जी जी, वो क्या है ना कि एक कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता है।
9: अभी अभी कॉल किए हैं तब फिर भी कॉल आप नहीं उठे।
10: चलिए कोई बात ना, लग गया ना आज कॉल।
9: मैम, गाना सुनना चाहते हैं बेवफा, प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, अपना नाजुक है मेरा दिल, तूने रिश्ता।
10: तो जाकिर जी गा के मुझे बताते दो लाइन तो बहुत ही अच्छा होता।
9: उतना तो मैम हमारा भी याद नहीं है, हिंदी गाना है, गा सकते हैं।
10: चलिए कोई बात नहीं, जितना याद है।

0: तो याद नहीं है। ठीक है
1: जी जी, आप तो बहुत ही अच्छा गा रहे हैं।
0: अरे मैम दूसरा गाना भूलिएगा तो सुना सकते हैं, मेरी गाना उतना याद नहीं
1: है। चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, आप गाना बहुत ही अच्छा गाते हैं।
0: गाना तो मैम गाते हैं मगर संगीत उंगीत सब कर रहे हैं। मैम हम कहा दोनों आँख से तो ब्लाइंड है, कहाँ हमको दिखाई पड़ता है, दोनों आँख से 100% ब्लाइंड है। तो क्या कर सकते, मेरा दोस्त का नाम लेना चाहते हैं, मैं गाना सुना दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल बता दीजिए।
0: सोफी आलम है, यूसुफ अली है, मुन्ना अंसारी है, मेराज आलम और जितनेश शर्मा, गोविंदा और इसमें हमारा जितना भी आपको रेडियो रिमिक्स जितना परिवार है उसको भी सबको सुनाना चाहते हैं। मैम गाना कोई बात नहीं है, और अगली बार फिर भी हम सुना देंगे दूसरा आपको।
1: जी जी बिल्कुल,
0: ठीक है।
1: चलिए क्या कीजिए, आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: ओके
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम मैम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: रेहमान बोलतन पठान पठे
0: जी, कैसन बानी?
1: ठीक बानी, अपन बताई
0: जी। हमरो ठीक बा। काजी कितना लेट से फोन करते, निकाह हो गई बा।

0: हाँ ठीक बानी, अपन बताई की रहुआ कैसे बानी।
1: हम ठीक बानी। हाँ लेट हो ना मैम।
0: तो और बताई, बता दी फरमाइश, वैसे भी टाइम भी ओवर होता।
1: टाइम तो ज्यादा ओवर होता, हम तो कहने का बात उतना हो, टाइम खत्म होके वाला बा, लेकिन तो लगाओ नहीं तो बिजी बताओ लगा लेकिन बात हो जाये। कल फोन ना उठाई हम आए,
0: कल फोन, अरे मैसेज इतना देता की कॉल
1: रहुआ आए तब लगाई, चीज भारती मेम रहे तब लगाई, लेकिन केव जन उठेबे ना कल हमारे फोन।
0: अच्छा अच्छा, और नंबर याद करके रख ले एक बार, ताकि जब भी आए तो उठा ले।
1: हाँ ठीक है, खाली दिल से याद करी, फोन पे ना याद करी ना।
0: हाँ
1: हाँ मैसेजो पहले कल पर कहा मैम देख ले मैसेजो, ऐसे मैसेज मोबाइल हम लग ना रहे जानी, कल हमारी साइड को लग रहा है तो कभी कभी बोल रहे घर तो मुझसे मैसेज कर देनी।
0: हाँ
1: तो कहाँ देख ले
0: बनी। हाँ हाँ हाँ ठीक बानी, तो बता दी फरमाइश, टाइम बहुत कम आपको।
1: हाँ बता देता नहीं, आज का दिन का रात है, पल भर के साथ है, जो अपना लगे उसे अपना बना लो, हिंदी गाय नहीं वे बजा दे।
0: यही बात पे तेन भूल गा के सुना दी ना।
1: गा के सुना दी।
0: हाँ हाँ,
1: का दिन का रात है,

0: अपना बना लो,
1: सुना नहीं?
2: बहुत अच्छा बा, सुनवाए के भी चाहते नहीं क्योंकि
0: सुने मैम सुने लो और रानी बाड़ी से सुनियो कल देख सुने के फोन कर ले रही वो सुनियो नसीवान से जरवान वो सुनियो
2: जी जी
0: हाँ बताई दो नाम पता पूछ के सब प्रचार कर दो नीनू
2: ना ना ऐसा मत ना वो फेमस होता नहीं हमनी के साथे साथे
0: हाँ ठीक है कह दो नी हाँ सुने नी तब थोड़ा बंद कर देने आज के टाइम हो जाला हाँ तो फिर जितना बाकी रहा उतना सुबेरे सुन लेनी तो चालू बा मैं
2: हाँ चालू बा चली तो फिर गाना प्ले करता नहीं
0: हाँ ठीक बापा बजा दी
2: जी सुनता सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 AM-Z पर।
9: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
10: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
9: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
8: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
6: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
11: Now pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: Jab phone ghanti bajti hai to kehte hain hello.
14: To dosto break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. Main aap sabhi ko bata dun, yadi aap sabhi is karyakram se judna chahte hain to pratyek sombar, budhvar aur shukrvar ko subah 11 baje se call karke apne gaane ki farmaish ko record kara sakte hain. Number hai 80-029-94-911. Ji haan, 80-029-94-911. To chaliye badhte hain aage aur lete hain agla call.
15: हेलो
16: तो मैडम,
7: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
15: हेलो
7: जी, जी नाम बता दीजिए अपना।
15: परमात्मा कुमार गोपालगंज।
7: जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
15: गोपालगंज से।
7: गोपालगंज में कहाँ?
15: कलामठिनिया।
7: अच्छा जी, तो क्या हो रहा है अभी?
15: काम कर रहा है, बारिश आ रहा है बस।
7: अच्छा जी, बारिश हो रहा है इधर?
15: बारिश हो रहा है इधर भी पंजाब में।
7: अच्छा, तो अभी आप पंजाब में हैं?
15: हाँ जी, सोमवार को कॉल मेरा लगा था, आज सोमवार को फिर एक हफ्ते बाद।
7: अच्छा, तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
15: फरमाइश हमारा है
7: रेलिया वाला।
15: हाँ जी हाँ जी, मैं बजा दूँ।
7: अच्छा अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
15: सब जितना रेडियो सुनते हैं उनको, सबको और आपको भी, और जितना है सब।
7: ओके परमात्मा जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
15: जी
7: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते
1: जी नमस्ते। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ।
1: तो नेहा जी क्या हो रहा है?
0: आपका इंतजार पहचान गई मैडम जी।
1: हाँ जी,
0: और समाचार बताए, तबियत कैसा हो गया?
1: सब ठीक
0: बात।
1: हाँ जी, ऐसे नेहा जी कहाँ से बोला था? नी भोरे चली तो, और बताई खाना पीना रहा भैया?
0: और खाना बढ़िया, दोबारा खाना है।
1: अच्छा चली बढ़िया बा, तो फिर बता दी आज की फरमाइश।
0: तो सारे लड़के मेहरारू से के होना जीतल बा।
1: हाँ हाँ ये तो गाना तो बताइले बानी है भी। हाँ नेहा जी, गाना रुआ गा के बता सको तनी हम?
0: थोड़ा सा गाना ना गाई ले,
1: दो लाइन गा दी थी तो ठीक रही,
0: थोड़ा लाइन गा दिखा मैं तो नहीं।
1: अच्छा तो नहीं सुना गाया, लेकिन तो हमके गा के सुन ले रहे रुआ।
0: गाना हम नहीं गा ले कहियो, फरमाइश देने वाली।
1: अच्छा चले कोनो बात नहीं के, और ये गाना क्यों के सुनवाए के विचार तनी?
0: सबसे पहले आपको जितने रेडियो रंजन खाते हैं उसका रेडियो रंजन 200 सुनता है सबके साथ।
1: ओके नेहा जी, तो फिर प्ले करते नहीं गाना
0: जी मैडम जी। नमस्ते
1: जी। नमस्ते मत रही सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
11: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070 32042 पे।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
4: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
16: और जी रोवा के नमस्ते, प्रणाम और राधे राधे, और कैसे सुनवानी जी रोवा?
15: जी नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, हम ठीक बानी, रोवा बताई रोवा कैसे सुनवानी?
16: और रोवा हमारे इंतजार कर रही हूँ, ठीक बानी।
15: जी बिल्कुल,
16: और बताई रोवा नाश्ता कर ले वानी?
15: हाँ हाँ, नाश्ता तो हो गई है।
16: और बताई ठीक बानी ना रोवा?
15: जी बिल्कुल, रोवा बताई की रोवा कैसे सुनवानी?
16: जी जी, हम ये रोवा के सुनते हुए और आवाज इतना अच्छा अच्छा सुनते हुए सब कोई झकास बानी, सब कुछ मस्त जबरदस्त सब कुछ झकास। अब रहुआ बताई रहुआ कैसन बानी और भारती दी कैसन बानी?
15: ठीक बानी
16: जी। अब आगे शो शुरू हुई की ना बुलाओ देने बोलो दुनिया भी बुलाई तो हम जरूर आए।
15: हम तो मैंने कहते बानी यही तो बोलते नहीं की कहीं रानी जी के शो में जुड़े के।
16: अच्छा और दी पता बा एक बार गुड न्यूज बा आज में बड़का फोन खरीदा जाये तब हम पर डे रोलो के बीच में जुड़े।
15: अरे वाह तो बहुत खुशी की बात बात। अब तो पार्टी बना था
16: और रोवा कहती तो पूरा पार्टी बना था दोनों आदमी कहते।
15: जी जी
16: और रोवा नाश्ता पूरा दोनों आदमी भरपूर करे हम लोग ऐसे कहे सभी कोई रोवालो से बेकरार रहेला बात करे खाती।
15: जी तो और बताए परिवार में सबके ठीक बानो?
16: जी जी सब कोई ठीक बा रोवालो के दुआ बा। और दी एक बात बोली?
15: हाँ जी बोलू।
16: और रवा नो जब भी कोई लिसनर अगर गाना बीच में से फरमाइश करे नहीं लो तो रवा डायरेक्ट पूछल करे की कौना मूवी से गाना बा और रवा कभी ऑन एयर माफी नत मांगे हम अच्छा ना रहेगा। और देखी रवा तो बताओ तनी सबसे ज्यादा गलतियां हरकत हम लिसनर सब में होला ठीक बा। कभी कभी हमने क्या करे नहीं सब बीच में मैच कर देनी सा कभी कभी अगर हम कहते नहीं जब हम मूवी के नाम देख ले बानी और जान पानी तो हम कहे ना वो मूवी के नाम उठा के अगला के हम गाना बता दे की हम रहे मूवी से गाना सुनने के बारे वो लोग दिक्कत ना हो। रवा ऑन एयर कभी भी माफी न मांगे हम उतना मायूस न हो के। और खास करके तो अंकल जी जो गाना खिलाफ मोदी से सुने के कहले रही मुझे वो जाना तरीका से बतैले रही गलत अतरल में के तो उन्हें केहू से मिस्टेक खा गई। और जीती बतैले रही रवा में कोनो भी गलती नहीं के रवा वही सोच के गाना बजैले रही बाकी जौन बिहान भैले वो गाना बतैले रही के खिलाफ मोदी से गाना सुनने के बाद वे काम वो दिन कैले रहते रवा भी दिक्कत न हो। रवा ऑन एयर कभी माफी न मांगे और रवालों में और देखिए स्टार्टिंग में सब कोई के थोड़ा बहुत दिक्कत होला दी और अच्छा ना लगे थोड़ा सा रुवा वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा जो माफी मांगे था हमके और अच्छा ना लगे। और देखिए और बार बार कहनी लो जी हमारे गाना कहिए बाजी हमारे गाना कहिए चली कभी भी रोवो से चाहे भारती दी से भी बात भई बात हम कभी भी हम अपन गाना नहीं की खेले हमेशा सुनते आई वानी। और आज ना तो कल तो बाजिए जला एक दो दिन आगे देखा और सबसे अच्छा तो रोज शो में एक जरिया बा हमी अगर सुबह में ना सुनी सा तो शाम के सुन सकता नहीं सा अगर शाम में ना सुन सकता नहीं तो सुबह में सुन सकता नहीं सा। और रोवा में कोनो गलती नहीं की दी और हमने और पता बा ये हम खुद एक लिसनर होकर हम बहुत जगह अगर चैनल से बात करेंगे तो हम बीच में से गाना बता देंगे तो वो तो आरजी पूरा कंप्लीट बानी लो ढेर दिन से शो करता नहीं लो तो वहां लोग पता चल जला और चाहे गाना भी बतावे नहीं तो हम क्लियर बता देंगे। और रोवा में कोनो गलती नहीं की दी और उतना मायूस न तो क्या अभी नया बानी रोवा और हमने भी फर्ज बांधता रोवा के पूरा सुहूर बिटोर के रोवा के ओर से आगे लेके चली सा। और रोवा इतने दिन में बहुत सारी आई बानी रोवा लो दोनों आदमी के अगर जितने आदमी के तारीफ करी तो बहुत कम पड़ जाये। और जो ओ जी गाना बीच में का वो मूवी के नाम पता बा अगर रख दे वहां लोग का दिक्कत बा और सबसे ज्यादा गलती है हम ये करेंगे सब लिसनर सब ठीक बा रोवा में कोई दिक्कत नहीं क्या रोवा कभी मायूस न छोड़े रोवा अपनी आवाज से जितने हमने के रोवा के आवाज से अगर हमने के तारीफ करी सब बहुत कम पड़ गई। और सुबह में डायरेक्टर सर के द्वारा कुछ लिसनर वालों के दोनों आदमी के बीच में मैसेज कई रही आई वो काफी अच्छा अच्छा उन्हें से रिप्लाई मिला रहा और डायरेक्टर सर ऊपर बहुत अच्छा अपने विचार रख ले बनी।
15: जी जी साहब हम ये कार्यक्रम चलाए
16: जी जी। और देखिए और कभी भी अगर हम कहते नहीं हमने हम तो बहुत ज्यादा मूवी देख ले बनी हिंदी में अगर बात करे तो हम डायरेक्ट नाव रख देने के लिए मूवी के गाना वरुआ बजा दे फिर वह आसान भी हुई सामने वाले के भी आसान हुई हमियों के आसान हुई सुनने में। और बाकी वो मेरे वो माफी मांगते रही तो थोड़ा सा बुरा हमके भी लगे भले बुरा क्यों के लागू चाहना बाकी सोचत रही कोई बुरा फोन रही एक दिन और शो करते रही हूँ मैं माफी मांग रही ऑनलाइन वाला शो में पूरा शो अंति पड़ाव पर हुए तो हम कहीं अच्छा कभी बात हुई तो बोले की इतना टेंशन न थी हम चली और दिल वाले मूवी में देखी मैं बड़ी बड़ी देशों में छोटी छोटी बात तो होती रहता है।
15: जी जी लेकिन कुछ कहीं ना तो
16: ओहो। और वह जो करी बहुत अच्छे से करी और वह आयुष आगे जान दी बहुत आगे जाए और सारी और रेशमा दी जो पहचान पुलिस से कॉल करे काफी कुछ हमारे बारे में बोलने रहे कई की तारीफ बोला तो दिल बड़ा गदगद बोला तो वहाँ के दिल से शुक्रिया रानी की तरफ से। और हम बात कहीं एक भी हम अपने दृष्टि डाल के देखिए हम अपना नजरिया से हमारी जितना लिसनर बानी लोन अपना जगह पर सबको एक से एक बढ़ के तो के अगर तारीफ नाम डाल के नहीं के कर सको शब्द नहीं के वो सब और सबसे अच्छा हमारा लगेगा हमारा अपने कॉल से ज्यादा लोग के कॉल सुने में बहुत अच्छा लगेगा उनको के कम नहीं की जब गाना गावे नहीं ना काफी अच्छा लगेगा।
15: जी जी
16: चलिए आज बिना देरी की आज सॉन्ग बजा दी रोवा के हम पूरा थोड़ा सा हिट दे देते हैं और भोजपुरी में बात बोलूंगा बाकी हिंदी गाना सुना दी
15: बता दी
16: जी। मूवी के नाम बा बेटा अनिल कपूर के हाँ और ये गाना बा धक धक करने लगा। हाँ गाना काफी खूबसूरत बा और ये गाना रोवा दोनों आदमी के हमारा तरफ से रानी के तरफ से और जितना रेडियो दोस्त बानी वो सबको के और रेशमा जी बानी पठानपति से होंगे कैचा भर के हमने दोनों आदमी के हिसाब बरोबर हो गए और वह कभी अपन लगन और मेहनत और शिद्दत और विचार और सबसे बढ़कर रोवलो में दो आदमी में आज भी तो बहुत लोग आए अगर एक नजरिया से हम देखी था बाकी जॉन रोवलो के नेचर बा जॉन रोवलो के विचार बा दोनों आदमी के बहुत अलग बा। हम सौ लोग के बीच में ही बात बोल सकता नहीं रोवलो के हाँ हाँ बहुत ज्यादा बाजी और देखिए सारी बात एक तरफ पर कभी भी इंसान के अंदर ही इतना रखे के चाहिए लिस्नर और अगर सामने वाला व्यक्ति बात करे तो दोनों आदमी फर्क ना पड़ेगी हम एक आगे से बात करता नहीं क्योंकि दोनों आदमी के लागू हमें एक रिश्नर रिश्नर से बात करता इमेज करे के चाहिए
15: जी
16: हाँ? जी और गाना प्ले करी और लोग भी लागल हुई लाइन में
15: जी

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
9: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो,
12: नमस्कार
11: मैडम। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: जी, साथ में आपका भी स्वागत है कि हमको गाना सुनाइए।
11: जी बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। नाम बता दीजिए अपना।
12: नाम बता दे, आप कौन बोल रहे हैं?
11: जी मैं मनोरमा।
12: अच्छा जी मनोरमा, तो बहुत दिनों के बाद आज मिली है।
11: जी जी,
12: मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरा से। मनोरमा जी, आपसे शिकायत है।
11: हाँ जी।
12: एक बार हमने फोन किया था तो आप गाना हमारा बजाई नहीं, है ना? बहुत इंतजार किया, उसके बाद आपके ये जो है आते जी, उनके बाद उनका नंबर आया तो उनके ना, जब गाना का उनसे हम रिक्वेस्ट किए तो उनका तो बजाया हुआ गाना सुन लिए, लेकिन उनसे एक दिन पहले आपका कॉल हमने किया था, वो गाना नहीं बजा मेरा।
11: गाना आज बजेगा, वो सबका कॉल जिन लोग का छूटा हुआ है, वो बारी बारी सबका बजता है।
12: वो गाना था मेरा, वो ऐसा तो गाना था लेकिन वो बजा नहीं है। आज गाना तो सुना था मैडम, वो कोमन झकोरा मेरे संग गाए के गुनगुन गुनगुन हवा चले, लता जी का गाना है।
11: जी जी,
12: ना तो वो गाना अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा गाना हमने रिक्वेस्ट किया था ना, बहुत अच्छा गाना था।
11: जी जी गाने बहुत ही अच्छे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी कॉल बाकी है और आज बजेंगे आपके कॉल।
12: आज वाला
11: और आज जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो तो कल या तो परसों ही बजेगा।
12: पहले से कितना रखती हैं जी?
11: वो क्या है ना, बीच में भारती जी भी रिकॉर्ड करती है ना, तो पहले वो रिकॉर्ड किए तो उनका चलता है, उसके बाद मेरा चलता है।
12: जी तो ऐसा नहीं है कि आपका रिकॉर्डिंग आपका चल जाए तो भारती जी का चले, ऐसा नहीं है?
11: ऐसा ही है, तो पहले भारती जी रिकॉर्ड करती है, उसके बाद उनका चल जाता है, उसके बाद मेरा होता है।
12: तो नहीं नहीं भारती जी तो अपना खत्म कर देना चाहिए उनको, है ना, तो आप मनोरमा जी आ जाती तो मनोरमा जी खत्म करती तो भारती जी आ जाती।
11: ऐसी कॉल मतलब अलग अलग करके ही चलाते हैं लोग, अब एक साथ तो होगा नहीं।
12: और बताइए मनोरमा जी कैसे खरीदे तो है ना?
11: जी जी सब बढ़िया है, और आप बताइए कि आप ठीक ठाक है ना?
12: हाँ हम तो ठीक है, पर अभी मौसम थोड़ा बेईमान हुआ था, आज मौसम थोड़ा सही हुआ है, कल भी सही हुआ था, दो दिन तो ऐसा हुआ था कि मतलब मार्केट जाना एकदम पूरा बंद हो गया था ना।
11: बारिश हो रहा था ना?
12: हाँ बारिश हो रहा था, आपके यहाँ नहीं हो रहा होगा? और गोपालगंज में कितना दूरी का फर्क है?
11: जी जी
12: आपसे हम ज्यादा दूर है, मीरगंज तो 16 किलोमीटर है
11: जी।
12: आपको गोपाल गाँव जो चौक जो है हॉस्पिटल का, वहाँ से आपका रेडियो स्टेशन 2 किलोमीटर पड़ेगा।
11: हाँ जी।
12: और मीरगंज से हम इधर 1 किलोमीटर, 16 और 3 कितना हो गया, 19 किलोमीटर का फर्क है आपके और मेरे बीच।
11: जी जी।
12: हाँ तो बारिश तो सब तरफ हुआ था, लेकिन बहुत ठंडा भी लगा।
11: बारिश हो रहा था तो बीच में ठंडा ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ठंड का मौसम आ गया।
12: हाँ तो हम तो एक रात तो ऐसे ही कपड़ा वपड़ा पहन कर हम सोए, बहुत ठंड लग रहा था। क्या बताया जाए, और सब ठीक है मनोरमा जी?
11: हाँ जी सब बढ़िया।
12: तो जो मेरा गाना आया ना, तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जो है मेरा सुनाया कीजिए मैडम जी।
11: जी जी मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपका गाना बजे।
12: आप पूछती है ना कि आप रेडियो में गाना कैसे सुनते हैं, आप गाना गाते हैं या नहीं है, है ना, ऐसा बात पूछती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना
11: जी।
12: कोई भी कंज्यूमर से आप ऐसा बात करती है ना तो हमको अच्छा लगता है, तो उसमें कोई अलग अलग और भी टॉपिक जो है ना जोड़ कर पूछा कीजिए, ताकि भारती जी भी समझे कि हाँ मनोरमा जी क्या बातें कर रही है, है ना। जैसे होता है ना लोग पूछते हैं खाना खाए हैं, मौसम कैसा है, यही लोग ना पूछते हैं ज्यादातर।
11: हाँ।
12: तो आप तो पूछते हैं कि आप गाना गाते हैं या कब से सुन रहे हैं, आपको रेडियो रिमझिम कैसे लग रहा है ना, इसका सभी प्रोग्राम कैसे लगते हैं, इसी का सवाल को लेकर के टॉपिक बनाइए, ताकि सारे आदमी से पूछे कीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और भी जो भी सुनेगा सब लोग कहेंगे मनोरमा जी अच्छा अच्छा सवाल करती है,
11: ऐसा
12: ही बनाइए। चलिए तो मैडम बहुत बात हो गया, आप गाना सुनवा दे दीजिए, पवन झकोरा मेरा संग आए, गुनगुन गुनगुन हवा चले, लता जी का गाना है।
11: जी जी और डेडिकेट भी है?
12: डेडिकेट आप ही को नाम में रहेगा और किसी का नाम में नहीं रहेगा।
11: चलिए चलिए तो प्ले करते हैं गाना आपका।
12: ओके जी।

0: मेरे दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
4: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
4: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
4: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-300-99-66-999।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल ID radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: Now pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
10: Hello?
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello?

0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैं मैहर एमपी से।
0: जी सुनील जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं अभी फोन लगाते हुए मैम।
0: अच्छा जी।
1: जी मैम, आऊँ वहाँ का मौसम का क्या हाल चाल है मैम आपके यहाँ?
0: यहाँ पे मौसम बता दूँ आपको तो धूप निकला हुआ है।
1: जी जी जी मैम।
0: जी और आपकी तरफ?
1: जी मैम, अभी तो 2-3 दिन पहले अच्छा बारिश हुआ था, आज तो थोड़ा धूप कड़ाके का है मैम, लग रहा अभी तो गर्मी से चालू हो गई मैम।
0: जी
1: मैम।
0: तो सुनील जी कौन सा गाना सुनिएगा आज?
1: जी फिल्म पुलाव काटे का और गाने के बोला जिसे देख मेरा दिल धड़का, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेंजन दोस्त लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते मैम।
0: ओके सुनील जी, वैसे क्या कर रहे हैं अभी आप?
1: अभी तो मैम बस बैठे हैं रेडियो रेंजन सुनते हुए मैम, और फोन लगा रहे थे और इससे पहले मशीन चला रहे थे मैम। जी
0: अच्छा जी, वैसे क्या करते हैं आप?
1: जेसीबी मशीन चलाते हैं मैम।
0: अच्छा जी, जेसीबी मशीन, चलिए बहुत बढ़िया।
1: जी जी जी, अभी तो खाली बैठे थे, हम सोचे अभी टाइम हो गया है तो अभी फोन लगाते, नहीं तो शो का रिकॉर्डिंग का टाइम समाप्त हो जाएगा तो फिर फोन नहीं लगेगा मैम, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अभी शो में जुड़े हैं मैम। बाकी बहुत अच्छा लगता है रेडियो रिंगिंग सुनते हैं दोस्तों के फरमाई का, अपनी फरमाई दोनों शामिल हो जाता तो बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: जी चलिए, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
1: जी जी धन्यवाद।
0: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सॉन्ग सुनना है, सुना दीजिएगा
1: जी। बिल्कुल बता दीजिए।
0: अजूबा पिक्चर का सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: और गाने के बोल,
0: तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया
1: जी। ये गाना आप गा के बताएंगे दो लाइन?
0: ये तो मैम थोड़ा याद नहीं है।
1: चलिए कोई बात नहीं है।
0: हम ओम साइकिल बोल रहे हैं, बंजारी रोड पुलिस के सामने, गोपालगंज से राघो जी।
1: जी श्री राघो जी, कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, आप लोग के दुआ से आशीर्वाद चल रहा है।
1: जी जी, बहुत लेट से फोन
0: का कॉल, 365 कॉल लगा दिए हैं एक साल का।
1: अच्छा।
0: सोचे कि आज बात नहीं हो पाएगी।
1: नहीं नहीं, देखिए बात हो गया ना, लेट से हुआ लेकिन हुआ।
0: एक दो कस्टमर भी छूट गए हैं फोन लगाने के चक्कर में।
1: अच्छा,
0: क्या बताएं, एक रेडियो रिव्यू से ऐसा आदमी जुड़ा है कि
1: जी जी, वो क्या ना, हम लोग को भी आदत हो गई आप लोगों से बातें करके। अब कॉल नहीं आता है तो लगता है कि हाँ नहीं किया।
0: आइए कभी हमारे शॉप।
1: जी बिल्कुल आएंगे,
0: आप लोग का स्वागत है।
1: जी जी, जरूर आएंगे लो, जब आपने बोल दिया तो जरूर आएंगे लो हम लोग। तो फिर चलिए इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी। और डेडिकेट भी करना चाहेंगे
0: पहले तो आपको और मैम को, और जितना रेडियो रिमझिम दोस्त सुन रहे हैं उन सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि नाम रखने में ना कोई आदमी नाराज होते हैं, हमारा नाम नहीं रखते हैं, उनका नाम रखते हैं, इसकी वजह से सब आ रही है, सब आदमी को सुनाना चाहता हूँ।
1: चलिए तो इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 आमजेड पर।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
9: भरोसे वाले से लेंगे,
8: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
9: और कीमत भी।
8: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
10: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
12: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
13: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070 32042 पे।
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello?
14: Now pick your phone up.
15: Hello?
16: The phone ding de bajti hai to kehte hain hello.
17: Hello.
18: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो,
2: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: हम थावे से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद
15: जी। जी क्या हाल चल रहा?
2: हाल चाल ठीक बा। भगवान जरा वो दिन दिन बना रहे, काल से आज बहुत बढ़िया दिन भज बा।
15: हाँ हाँ, दिन तो बहुत ही अच्छा भज बा।
2: तो जाना सुना बा,
15: बता दी
2: चट न मार डाली घींच के तमाचा, किसी किसी हंसा लगा प्रिंकिया का साप।
15: हाँ हाँ, गाना तो बहुत ही अच्छा बा जी। और ये गाना खेल के सुनाए के विचार करनी?
2: हमारे शाली सुनिए, सुशीला देवी, सौरभ सुनिए, गीता देवी, रीता देवी, हम सुने, रोवा सुने, जितना रेडियो रिमझिम सुनते सब कुछ सुने।
15: चलिए तो रोवा ठीक बने?
2: हाँ हम ठीक बने, सब भगवान के दया बा
15: जी। जी चलिए तो बढ़िया बात, और गाना सब प्ले करते
2: हैं। अपन नाम बता दी
15: जी? हमारा नाम मनोरमा।
2: चलिए ठीक बात, नमस्कार
15: जी।

0: हेलो मुन्ना जी प्रणाम।
1: जी जी प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत बार रेडियो 90.4 FM में। जी ठीक बानी, अपन बताई।
0: ठीक है बानी, सोचा नहीं दो दो मिनट बाद तक तो फोन लगाई, लागत है कि नीचे लागत।
1: अच्छा और देखी किस्मत लाग बेल में
0: लगाओ के सुना रहा, लेकिन मानत नहीं के दिलवे नहीं के मानत।
1: अच्छा तो काहे नहीं लगा के मन करत, का हो गई बा
0: ऐसा ही?
1: अच्छा वो तो बराबर करत रही है, अभी बीच में ऐसा का हो गई बा जे फोन करे के मन नहीं करत रहुआ के।
0: पता ना रिमझिम से का हो गई बा,
1: पहले खाली दिल लगाई अच्छा लगी थी।
0: वे तो आदमी कोशिश कर कि नहीं कर, लेकिन फिर दिल ना मानल तो कहीं चार मिनट बाकी रहल तो कहीं रुको तनी करी लागत है कि ना भैया तक लास्ट कॉल बा। और सुनाई
1: और सब तो ठीक बा? रहुआ ठीक बानी
0: हूँ। ठीक है बानी, आज छुट्टी बानी? छुट्टी बा तो कहनी की फोन कर दी ना तो खानो ना खाई।
1: अच्छा
0: बहुत भीड़ चलत है गरीब जिम में।
1: हाँ ना
0: तो ऐसे हम सोचे तनी की अब ज्यादा भीड़ होते तो भीड़ में ज्यादा धपियावला के जरूरी नहीं के। तन टेंशन फ्री रहे चाहिए।
1: अच्छा बात नहीं के रहो, फरमाइश करी रहो पूरा करे।
0: तो अनु दुबे के बाद तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे।
1: जी जाना तो बहुत ही अच्छा बा,
0: तो तन बजा दे।
1: जी बिल्कुल,
0: ये रिक्वेस्ट बात रौड़ा के कार्तिक जी के और जितना हमारे नाम से जाने वाला है सबके, हम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से।
1: तो चलिए फिर प्ले कर देना और गाना
0: करे इंतजार है। चले चले फिर ठीक है,
1: ठीक है तो प्ले कर देना सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,
1: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: हाँ जी, बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी वालेकुम अस्सलाम,
8: मैं हैदराबाद कर रही हूँ सूरत से।
9: जी जी, कैसी हैं आप?
8: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
9: जी मेरा भी बढ़िया।
8: नाश्ता पानी सब हो गया है ना?
9: हाँ जी हो गया, और आपका हुआ?
8: जी मेरा भी हो गया है, और रेडियो रिमझिम का पूरा टीम अच्छा है ना?
9: जी जी, सबको ही बढ़िया।
8: अच्छी है,
9: बढ़िया है। जी ऐसा लगता है आपसे मुझे पहली बार बात हो रही है।
8: हाँ लग तो रहा है पहली बार बात हो रही है, लेकिन हम तो कॉल किए हैं, पहले ज्यादा कॉल करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से, मतलब शादी जब से हुआ तो हम जरा कम कर दिए हैं।
9: अच्छा जी।
8: हाँ, तो अब थोड़ा बहुत ही है, 3-4 बार हो गया लगातार हमको कॉल किए हुए।
9: अच्छा जी, तो इससे पहले भारती जी से बात हुई होगी?
8: हाँ, वो एक महीना से लगातार हम 4 बार कॉल किए हैं।
9: अच्छा,
8: 4 बार में 2 ही बार अपना सॉन्ग सुने हैं, 2 बार नहीं सुने।
9: तो जो रिकॉर्डिंग कराई होंगी तो जरूर बजा होगा।
8: बजा होगा, लेकिन हम ना नहीं सुन पाए, मतलब बजा नहीं है, मतलब हम रेडियो नहीं सुन पाए हैं। सॉन्ग तो बजा ही होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बजा होगा। एक बार नहीं बैठे तो दोबारा कोई सुन लेता है, दोबारा ऑप्शन मिलता है सुनने को सुबह में।
9: हाँ सुबह में
8: नहीं, 9 से 10 के बीच।
9: 9 से 10 के बीच हाँ शायद।
8: 9 से 10 बजे तक होता है और 11 से 10 के बाद 11 चलता है SMS फरमाइश, उसके बाद ये वाला चलता है।
9: जी जी।
8: तो आज सॉन्ग सुनवा दीजिएगा मेरे साथ चलते चलते कहाँ ठहर गए तुम।
9: जी तो ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे?
8: ये मैं दूसरा गाना गा सकते हैं, ये सॉन्ग है हमको दीवाना कर गए मूवी का, मेरे साथ चलते चलते कहाँ ठहर गए तुम, दूसरा गाना गा के सुना सकते हैं।
9: अच्छा चलिए कोई बात नहीं है।
8: तो आप कहिएगा तो दूसरा सॉन्ग आपको सुना सकते हैं।
9: जी बिल्कुल सुना दीजिए।

0: कितना ही मैं
1: जी, आप तो बहुत ही अच्छा गाती हैं
0: जी, थैंक यू। आगे सुना, आगे का लाइन भूल गई इसीलिए मैं सुना पाया।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: बात करेंगे तो सुना देंगे।
1: जी जी बिल्कुल, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा गा रही थी आपने,
0: थोड़ा बहुत गा लेते हैं।
1: जी जी बहुत ही अच्छा। और जो गाना बताई है वो गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
0: जी जी आपको और नासबेन जी को और कुछ रेडियो दोस्त हैं, रहीना जी हैं, सफार जी हैं, सलेहा जी हैं, सजा है, ब्यूटी फरमीन, रोमीना नाज, अख्तरी जी और रानी जी और इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, दिलीप राम दिल्ली से, और वीरेंद्र गुप्ता और समीर भाई और जितने जाने पहचानने वाले हैं उन सभी को।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन रिंग पे बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
7: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
7: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
7: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में,
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: तू जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमा जेड पर।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
8: प्रेरणा क्या कर रही हो? प्लीज मत जाओ प्रेरणा, वो तुम्हें किस कर लेगा
9: घर से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बाल मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन।

0: सिंह MBBS MS जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम
2: सुनो दिल से।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुँच कर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: All right.

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277166596। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जब तक हमारे प्यारे प्यारे लिसनर हमसे जुड़ते हैं तब तक आप सबके लिए एक गाना प्ले करूंगी और गाने की बोल है चलने लगी हैं हवाएं। अभिजीत जी की आवाज़ में गाना है तो गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ मेरी तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग।

तभी हम लोग सुन रहे थे प्यारा सा सॉन्ग चलने लगी है हवाएं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे साथ काफ़ी सारे हमारे लिसनर जुड़ चुके हैं, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि सुपर सॉन्ग, हेलो दी, सब केहू के प्रणाम, बोल दिया स्पेशल में भारती दी के। और लिख रहे हैं कि मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से का हलवा, भारती दी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और लिख रही हैं कि रउआ से बात तो ना भइल है, हेलो माई चॉइस में, और बहुत दुख के बात बा दीदी, और लेकिन मनोनवा दी से बात भइल है, और हमारे भैया के संगे हम जुड़ल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। और इसी के साथ लिख रही हैं प्लीज़ दी बजा दीजिए मेरा गाना, और मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को मैं सैटरडे को ही प्ले की थी, इसलिए मैं आज प्ले नहीं कर सकती। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मैं सिद्धार्थ पासवान बरौली से, और लिख रहे हैं कि आज मेरा भी एक वीक हो गया है, गाना सुना दीजिएगा। और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश का वीक अभी एक वीक नहीं हुआ है, बुधवार को होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो हाय, क्या हाल चाल है, कैसी हो आप सब, हम गोपालगंज से जुड़े हैं, आलिस मेहरा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं राधे राधे, मिथुन शर्मा बेंगलोर से जुड़ गए हैं और सुनना चाहते हैं गाना, लिंक भेज दिए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, माई मैं सजिया नवादा से, और क्या हाल है भारती दी, मैम मनोरमा मैम सॉन्ग सुनना है। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं कि ओपनिंग सॉन्ग बहुत मस्त है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुझे भी गाना सुनना है, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, गाना सुनना है जिसका लिंक भेजे हैं, और सुनना है सुनाना है आपको, सोनू भाई को, राम कुमार पांडे जी, कमरान भाई, सबिता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, गजाला जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, खुशबू जी, सागिर अंसारी, आजाद भाई, सन्यासी भाई, समीर भाई, मुकेश भाई, गट्टा भाई, रोशनी जी, वीरेंद्र भैया, और दिलीप राम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं, और गाने की बोल है धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, और मूवी है फूल और कांटे, काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, तो गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
6: थोड़े से ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे मैसेज की तरफ। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं, मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम जी, जो कि लिख रहे हैं कि चलते चलते राहों में उनसे मुलाकात हो गई, चलते चलते राहों में उनसे मुलाकात हो गई, वो कुछ सरमाई फिर सहम सी गई, दिल तो हमारा भी किया कि कह दे उनसे अपने दिल की बात, पर कमबख्त इस दिल की इतनी हिम्मत ना हुई। और लिख रहे हैं शुक्रिया भारती जी गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि मुन्ना खान घर बंजारी और बड़ा मस्ताना। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, मैं निजामुद्दीन सऊदी अरब से, और मैडम जी बोल रहे हैं कि जो रात को प्रोग्राम आता है SMS के बहाने, इसमें सोनू सर आते हैं, क्या वह प्रोग्राम बंद हो गया है? क्या सोनू सर का विदाई हो गया है क्या? इसके बारे में ज़रा बताइए। तो जी, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी की विदाई नहीं हुई है और उनका भी प्रोग्राम रात को चलता है, आप सुन सकते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, और हम भी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते जी, कैसी हैं? ठीक हैं सभी दोस्तों, दोस्त कैसे हैं? ठीक है, मुझे गाना सुना दीजिए। और मुझे भी गाना सुनना है। और सविता चौहान भूज छापर से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, नमस्ते मैम। शाहुल कुचायकोट से जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि रेडियो रिमझिम सभी परिवार को सुनाना चाहते हैं सॉन्ग। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से, अभी दुबई से सुन रहा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहा है, नमस्ते भारती मैम, संजय यादव दुबई से, और लिख रहे हैं क्या हाल है। तो जी, मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और अगला मैसेज पहुँचा हुआ है सरफरोज अली गोपालगंज से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं भारती जी नमस्कार, तो आपको भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है हमारे पास, जो कि गाना सुनना चाहते हैं बिट्टू कुमार लखीसराय सूर्यगढ़ से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है, दिल मेरा घर है आपका, और कुमार सोनू और अलका याग्निक की आवाज़ में गाना है। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे बहुत ही बेहतरीन गाना, और गाने की बोल थी दिल मेरा घर है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है, बिट्टू कुमार लखीसराय से जुड़े हैं और लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, नमस्कार प्रणाम बा गोड़ छू के भारती जी, हमहू आगल बानी, हमरो हाजिरी लगा दी, अभी हम गोपालगंज सदर अस्पताल से जुड़ल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आप गोपालगंज सदर अस्पताल में क्या कर रहे हैं ज़रूर बताइए। और लिख रहे हैं कि प्रेम में पढ़ा लड़का रस या झोर को ग्रेवी बोलने लगता है। और जी आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कल का मेरा गाना नहीं बजा है मैम, कृपया आज बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं मनीष कुमार गुप्ता आलमपुर से, आलमपुर सासाराम बिहार से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दीनानाथ यादव कुबैत से जुड़े हुए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम में। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम, मैं मेरा नाम सत्येंद्र पल कुवैत से है और गाना सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरे प्रिय आरजे भारती जी नमस्कार, कैसन बानी, आज हमरो एगो गाना के फरमाइश बा और एक हफ्ता कंप्लीट हो गल बा और एगो गाना सुने के चाहतानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और लिखतानी कि ई गाना रोआ के और मनोरमा जी के सुनावे की चाहतानी, और अनिल भाई प्रमुख भाई सन्यासी रंजन बाबा के और जितना सारा हमरा के हमरा नाम के जाने वाला बाने उन लोग के डेडिकेट बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और मैसेज करे वाला बानी धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते जी, संजय कुमार पूर्वी चंपारण से, और मुझे भी गाना सुनना है और दोस्तों के साथ तरबेज़ आलम शमशीर आलम। तो बहुत बहुत स्वागत है जी, आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि सुनील कुशवाहा मैहर MP से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं। गाने के बोल हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: क्या मैं ही कहता रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कहोगी?
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
6: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
5: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
6: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
5: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिधवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
6: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
5: खादी आत्म

0: अभिमान।
1: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
2: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
1: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
3: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
4: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी। Thank you.

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो टिमटिम 90.4 एफएम में और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:36 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रही है करिश्मा जी की भारती दी की आवाज़ कितना अच्छा लागेला। और लिख रही हैं कि प्यार वो नहीं जो पूरी दुनिया को दिखाया जाए, प्यार तो वो है जो दूर रह कर भी निभाया जाए। और क्या बात कही है करिश्मा जी ने और काफ़ी प्यारी लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती दी मैम मैं प्रिया दिल्ली से और गाना सुनना है, मुझे भी एक गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है नमस्कार भारती जी, मुझे भी एक गाना सुनना है और वह गाना तेलुगु में है, क्या आप उस गाने को बजा सकती हैं या नहीं? और मेरा नाम मनवीर कुमार है और लिख रहा है कि मेरे गाने का लिंक भेज दिया हूँ, अभी मैं आंध्र प्रदेश राजमुंद्री से रेडियो रिमझिम सुन रहा हूँ। तो जी बहुत बहुत स्वागत है और जी आपके लिंक को मैं चेक करके बताती हूँ कि आपका गाना किसमें है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम कैसी हैं, माय नेम इज़ सिमरन फ्रॉम गोपालगंज से एंड मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल यहाँ पहुँचा हुआ है और यहाँ पर एक मज़ेदार जोक भी पहुंचा हुआ है। लिख रही हैं कि एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजा रहा था, दूसरा व्यक्ति उसे गौर से देखते हुए बोला भाई साहब आप स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो धक्का लगा दूं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना प्लीज़ प्ले कर दीजिए। और जी भी बिल्कुल आपके गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पिंकू राय सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं और बहुत दिन बाद जुड़ा हूँ और मुझे भी गाना सुनना है। लिख रहे हैं भारती जी दिल से आपका नमस्कार है। तो जी आपको भी मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ जो गाने की फरमाइश पहुँची हुई है मुकंदर कुमार कुशवाहा बंजारी से जुड़े हुए हैं, बंजारी के रहने वाले हैं, अभी दुबई से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं गाना सुनना है और गाने की बोल है तेरी उंगली पकड़ के चला और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। और मैं आप सबको बता दूं कि आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी सुझाव भी दे सकते हैं ताकि और बेहतर कर सके रेडियो रिमझिम। और इसी के साथ मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि अभी हमारे स्टूडियो में हेलो माय चॉइस की रिकॉर्डिंग चल रही है, और जो भी अपना गाने की फरमाइश की रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा और भारती मैम, कुस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, हम कुवैत से जौहर आलम और हमको गाना सुनना है। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, न्यायपारा विरई से प्रमोद कुमार साहू, आपने अभी तक मेरे फरमाइश क्यों पूरा नहीं किया, 3 दिन से भेज रहा हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को मैं सैटरडे को प्ले करती हूँ, इसीलिए आज मैंने आपके गाने को प्ले नहीं किया, और रूल्स तो आप सबको पता ही हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, कृष्णा कुमार, क्या हाल है, और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहते हैं, और लिख रहे हैं कि सतेंद्र पल कुवैत से जुड़े हैं और प्रमोद प्रेमी का गाना सुनना है, और गाने की बोल है आ फरियाले, भोजपुरी गाना है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:54 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप फेसबुक पर से रेडियो रिमझिम से जुड़कर वहां पोस्टर पे लगे सारे प्रोग्राम के नंबर को नोट कर सकते हैं और सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि बोल दीजिएगा, मैसेज करने वाली है करिश्मा जी, लिख रही हैं कि बोल दीजिएगा सुपर सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं धनेश कुमार मिश्रा जी की पत्नी, जरा किचन से आलू लेते आना पति, यहाँ तो कहीं आलू दिख नहीं रहे हैं। पति तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पहले ही ले आई थी। अब आदमी की कोई गलती हो तो बताओ। और काफ़ी मज़ेदार लाइन पहुंची हुई है धनेश जी की तरफ से। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आलम राज बिहार मोतिहारी जिला नरकटिया बाजार वार्ड नंबर 8 से जुड़े हैं और लिख रहे हैं योगेश कुमार रसिया और सुरेश कुमार जम्मू कश्मीर से। और भारती जी नमस्ते, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तुझे आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा, पर आज नहीं गुरुवार को। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सन्यासी रंजन जी की, मौसम ठंडा होते ही पंखों की स्पीड कैसे तेज हो जाती है, जबकि यही पंखे गर्मियों में ऐसे चलते हैं जैसे कमबख्तों ने भांग पी रखी हो। और ये सन्यासी रंजन जी की तो बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैम जी नमस्कार, हम लोग भी आपके कार्यक्रम को सुन रहे हैं और अभी जो गीत चल रहा था वो बहुत ही अच्छा लगा और गाने की बोल है तेरी उंगली पकड़ के चला। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर देव भूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुँच हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, पिंकू राय सऊदी अरब से जुड़े हैं और गाना के अब बोल है काजल काजल सॉन्ग और मूवी है सपूत और काफ़ी बेहतरीन गाना है। तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी, थैंक यू सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको दिल से धन्यवाद। तो जी बिल्कुल, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए, और मैसेज करने वाले हैं आलम राय, बिहार मोतिहारी जिला नरकटिया बाजार वार्ड नंबर 8 से जुड़े हुए हैं। तो जी आपके भी गाने की फरमाइश को गुरुवार को पूरा किया गया था और फिर से उसी दिन पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पुट्टू भाई मीना बाजार से, और मुझे भी एक गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है, और जी आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो, और मैसेज करने वाले हैं मनीष जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और प्लीज़ मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा करूँगी, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि राधे राधे, मिथुन शर्मा बेंगलोर से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और इनकी तरफ से गाने की लिंक पहुँची हुई है, और गाने की बोल है दे द माहूर बड़ा करम हुई, और काफ़ी दर्द भरा गाना लग रहा है। तो चलिए आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: मुझसे ज्यादा प्यार है।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के

0: अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहा है कि नमस्ते भारती जी, आप कैसी हैं और मैं भी जुड़ गया हूँ और फरमाइश भेज दूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी आप अनिल जी अपनी फरमाइश को भेज सकते हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं पुट्टू भाई जी की मैडम जी गाना सुना दीजिए प्लीज़, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम सुनील कुमार पूर्वी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से जुड़े हैं और लिख रहे हैं भारती जी गुड आफ्टरनून, प्रोग्राम अच्छा चल रहा है जी और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम अब बजाइए और मैं भी आ गया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि रूल्स तो रूल्स होता है और आपके गाने की फरमाइश को मैं कल पूरा करूँगी। और सरफरोज अली जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार भारती मैम जी और रहीम आलम बेंगलोर मॉडर्न लेडीज टेलर और एमडी मीनू बेंगलोर से, गुड्डू भाई मीना बाजार मोतिहारी से, सजाद आलम बेंगलोर से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं तबीयत खराब था इसलिए दो दिनों से नहीं सुन रहे थे और मुझे भी आज गाना सुनना है, सुनवा दीजिएगा। और रहीम तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और जी आपके गाने को हमने थर्सडे को प्ले किया था और फिर से आपके गाने को उसी दिन प्ले करूंगी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं मनवीर कुमार जी और लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, मैं आंध्र प्रदेश राज मुंद्री से रेडियो रिमझिम को सुन रहा हूँ और मुझे आज एक तेलुगु गाना सुनना है। और लिख रहे हैं कि मेरी महिला मित्र को सुनना है और वो वहीं की है, आंध्र प्रदेश की है और उसे भी ये गाना सुनना है और प्लीज़ गाना प्ले कर दीजिए। मैं आपको बता दूं आपका गाना तो तेलुगु में है और हमारे जो लिसनर है और मुझे भी तेलुगु गाना तो समझ में आएगा नहीं, पर आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए आपके गाने को मैं प्ले कर देती हूँ। पर और आप दोनों एंजॉय कर सकते हैं तो चलिए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।
9: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो मैं आप सबको एक और बात बता दूं कि जो हमारे साथ हमारे पुराने श्रोतागण जुड़े हैं उन्हें रूल्स तो मालूम है, पर जो हमारे नए श्रोतागण जुड़े हैं उन्हें बता दो कि आप अपने गाने की फरमाइश हफ्ते में एक बार करें, और जुड़ने के लिए तो रोज़ आप जुड़ सकते हैं और सभी के द्वारा फरमाइश किए गाने को इंजॉय भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो दी, कैसी हैं आप? तो जी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं सोनी बर्नवाल और देवरिया से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी, मैं आपके बता दूँ कि आपके गाने को तो मैं आज प्ले नहीं कर सकती, थर्सडे को प्ले करूँगी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मेरा गाना प्ले कर दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं जसवंत कुशवाहा जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मेरे वाले गाने के मैसेज पेटी में डाल दिए हैं क्या मैम? तो जी नहीं, आपके गाने को पेटी में नहीं डाले हैं, और आपके गाने की फरमाइश को मैं बता चुकी हूँ कि गुरुवार को प्ले करूँगी, और आपका दिन उसी दिन पूरा हो रहा है। और मैसेज करने को तो आप रोज कर सकते हैं, और अपने गाने की सभी के गाने को सुन सकते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं जो कि लिख रहे हैं कि कैसे करूँ किसी पे भरोसा, यहाँ हर सवाल का झूठा जवाब मिलता है, किससे समझूँ अपना, किसे समझूँ पराया, यहाँ हर चेहरे के पीछे एक अलग नकाब होता है। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और सचिन कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और इनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुंचा हुआ है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
10: गुड मॉर्निंग सनी मैडम, मैं सचिन कुशवाहा पुणे से। मेरे को अभी सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ। मैं बहुत दिन बाद इस शो से जुड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, आज टाइम मिला है तो शो से जुड़ रहा हूँ। प्लीज मेरा सॉन्ग बनाने का कोशिश करिएगा।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97007006575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
3: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं एक विचार है।
3: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
3: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
8: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं अनिल छोटपुर से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि रेडियो दोस्त लोग के गाना सुना एक बार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, और लिख रहे हैं कि ये शराब की बोतल यहाँ से हटाई जाए, सामने महबूब की तस्वीर लगाई जाए, मैं सारी उम्र नशे में रहना चाहता हूँ, मुझे अब उसकी आँखों से जाम पिलाई जाए, मैं खरीद लूँगा तुम्हारे

खाने की हर एक बोतल, बस उसे बोतल पे उसे बेवफा की तस्वीर लगाई जाए। और क्या बात है, क्या लाइन पहुंची हुई है रोहित जी की तरफ से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो, क्या का हालबाजी। और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं संतू भाई, और संतू भाई साथ में है, और फलानवा की पतो चले लुगा धके माथे गाना सुनना है। और लिख रहे हैं सोनू भाई की फरमाइश है और जल्दी बजाइए। और मैसेज करने वाले हैं मनीष जी और आरजे सोनू जी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं, और गाने की बोल है फलानवा के पतो। गाने प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे अंकुश राजा का प्यारा सा सॉन्ग फलाना के पतो चले लुगा धके माथे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो कि मनीष जी और आरजी सोनू जी लिख रहे हैं, थैंक्स गाना प्ले करने के लिए, और लिख रहे हैं फुल एंजॉय हो रहा है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अस्सलामुअलैकुम मैम, और मैं संजय नवादा से, क्या हालचाल है आपका, और सॉन्ग सुनना है। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सजाद आलम, हाय भारती जी गुड आफ्टरनून, और हम बेंगलोर से आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे गाना सुनना, मुझे गाना सुनना है। और पिक्चर का नाम यहाँ पहुँचा हुआ है और गाने की बोल भी पहुंची हुई है, और डेडिकेट करना चाहते हैं आपको और रहीम पुट्टू मीनू समस्त सुनने वाले को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी, और जी आपके भी गाने को प्ले करेंगे, पर उससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं अपने गाने की फरमाइश की, और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है लोग पंखा में तुर देला दम। ओहो क्या बात है, बहुत ही सैड सॉन्ग है, और लिख रहे हैं कि डेडिकेट करना चाहते हैं भारती जी आपको, मनोरमा जी, अनिल भाई को, प्रमुख जी को, सन्यासी रंजन बाबा को, और जितने सारे मुझे जानने वाले हैं सबको ये गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
1: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
0: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
2: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
3: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज।
12: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 91.4 FM में। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धन्यवाद बोल दीजिएगा धनेश मिश्रा भैया जी को अपने गाने में शामिल करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं अनिल छोटपुर से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाम बोलने के लिए थैंक यू, प्लीज़ गाना भी सुनवा दीजिएगा। तो जी, आपके गाने की भी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई वांट टू लिसन वन सॉन्ग और शो प्लीज़ प्ले माय रिक्वेस्ट सॉन्ग एंड थैंक यू। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी अरब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी, आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, तू दरिया सी है ये लहर कौन देखेगा, तो खूबसूरत से भी ज़्यादा खूबसूरत है तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। और लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं रोहित जी देहरादून से, तो यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती दी का हाल बा और आन बान शान, और मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से सिवान से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है पिपरा सिवान से जुड़ा हूँ तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि आँखों का पानी और दिल की कहानी, माँ के सिवा कोई नहीं समझ सकता। तो जी बिल्कुल, आपकी बात सही है और काफ़ी प्यारी लाइन पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राधे राधे मैडम जी, मैं जितेंद्र धाकड़ गुना जिला से, और गुना जिला और ककासा से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और मैसेज करने वाले हैं अनिल छोटपुर से और गाना सुनना चाहते हैं कि झूठे राव और बोलिया ए राजा जी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस के का शो, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अनिल जी की, धन्यवाद भारती जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं धनेश कुमार मिश्रा जी की, अनिल भाई मेरा मनपसंद गाना बजाएं और मुझे सुनाए हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुनना है और पवन सिंह का गाना सुनना चाहता हूँ। तो जी, मैं आपको बता दूँ और उस समय से आपको बता रही हूँ कि आपके गाने को मैं आज प्ले नहीं कर सकती, मैं आपके गाने को गुरुवार को प्ले करूँगी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, हेलो भारती मैम, मेरा नाम अखिलेश महतो है और मैं हिजरा नवादा पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से हूँ, और मैं अभी आपका कार्यक्रम कर्नाटक से सुन रहा हूँ, और मैं हमारे 2 हफ्ते होने को हैं, फरमाइश आप नहीं बजाई हैं और मैं 1-2 दिन सुनना भी नहीं हूँ, अगर कहीं हमारा फरमाइश बच गया है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, अगर नहीं बजा है तो बजा दीजिए। और मनोरमा मैम को हमारे तरफ से प्रणाम, और इस मैसेज के जरिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि बज गया होगा तो कोई बात नहीं, और नहीं बजा होगा तो बजा दीजिएगा भारती जी, हर फरमाइश बजा दीजिएगा। और सादर सिन्हा जी की आवाज़ में मुझे गाना सुनना है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी आपकी गाने की फरमाइश को पूरा नहीं किया गया है तो जी आपकी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत सुंदर गाना। और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून भारती जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और शिवानी कुमारी थावे से जुड़ी हुई हैं और गाना सुनना चाहती हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है और काफ़ी देर से अपने गाने की फरमाइश की वेट कर रहे हैं और मैसेज करने वाले हैं जो कि इनकी फरमाइश वॉइस के माध्यम से पहुँची हुई है, तो चलिए जानते हैं क्या है इनकी फरमाइश। और लिख रही हैं कि नए लोगों से कोई दुश्मनी है क्या जी, बता दीजिएगा। तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। और सभी के गाने को मैं एक एक करके प्ले कर रही हूँ और आपके भी गाने को प्ले करने जा रही हूँ, तो अपने वॉइस को सुनिए।
5: हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं अलीशा मायरा गोपालगंज से बोल रही हूँ। मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है, प्ले सुना दीजिएगा। सॉन्ग का बोल है, जोड़िया बन के आती है खुदा के घर से, कोई कितना भी दिल लगा ले दिलो जिगर से। जोड़िया बन के आती है खुदा के घर से, कोई कितना भी दिल लगा ले दिलो जिगर से। प्लीज मैम सुना दीजिएगा, और सुनना चाहते हैं रेडियो रिमझिम जितने भी लिसनर हैं उन सभी के साथ। थैंक्स।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:03 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि थैंक्स मैम गाना सुनाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो नमस्ते मैम फ्रॉम हरिओम गोस्वामी विलेज मनमोहन और डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ UP से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं मैम मैं भी जुड़ चुका हूँ और लिख रहे हैं प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग और लिख रहे हैं कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि भारती जी दोपहर समाचार के बाद मेरा गाना बजाइएगा। तो जी बिल्कुल आपके गाने को उसी टाइम बजा दूंगी। और यहाँ जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि उमा शंकर मिश्रा दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और मैसेज पहुँचा हुआ है यहाँ हमारे पास, लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम रेडियो रिमझिम परिवार को और सोमवार की दोपहरी रेडियो रिमझिम का साथ योर वॉइस योर चॉइस के शो हो खुशियों की बरसात। मनोरमा मैम की प्यारी आवाज़ जब कानों में आती है सुनी सी दोपहर भी मुस्कुराती हुई नजर आती है। और सुनिए दोस्तों आज खुशी की एक और बात, हमारे गांव बसडीला बाजार में लगा है मेला खास, 3 बजे से मेला सजने वाला है रंग बिरंगे अंदाज में, जो जो दोस्त आना चाहते हैं आ जाइए प्यार के अंदाज में, दोस्ती का साथ हो, चेहरे पर मुस्कान हो, मेले की रौनक में हर दिल में अरमान हो, रेडियो रिमझिम की आवाज़ और दोस्तों का प्यार आज बसडीला का मेला बना दे दिन शानदार, जिस दोस्तों को आना है दिल से स्वागत है आपका, मिलकर हंसेंगे मिलकर मुस्कुराएंगे, यही तो रिश्ता है अपना। और मैसेज करने वाले हैं राघव जी ओम साई टेलर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो हमारे पास अगले गाने की फरमाइश पहुँच हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, साजिया नवादा से जुड़ी हुई हैं और गाना सुनना चाहती हैं। गाने की बोल है साजन साजन और लिख रही हैं, गाना सुनवाना चाहते हैं आपको और हमारे सभी लिसनर को सुनवाने चाहती हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ और हमारी मुलाकात आपसे होगी फिर दोपहर न्यूज़ के बाद। और जिनके भी गाने को प्ले नहीं किया गया है दोपहर न्यूज़ के बाद प्ले फिर से किया जाएगा। तब तक आप सभी इंजॉय करते रहें इस गाने को।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 97765-6750।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामलांग की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
2: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
2: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामलान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामलान के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामलान को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
3: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
5: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
6: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
5: There are rooms to operate from, both sides will do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
6: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
5: 97%
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
7: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
8: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
7: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
9: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
7: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचारण क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। यह हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और

0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की CBI जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894704 या 9198886973।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: ऑलराइट।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
0: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
1: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
0: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
1: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
0: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
1: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
3: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
2: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
3: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
2: कहाँ?
3: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
0: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
1: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
1: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
1: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80023-3586 या 95-999-27-982।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
5: All right.

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जेजी शरण, एमडी फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर जेजी शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
2: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: थोड़े से ब्रेक और दोपहर न्यूज़ के बाद फिर से स्वागत है आप सबका योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अगर आप हमसे इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनना चाहते हैं। हाय मैम, मैं मकसूद आलम दुबई से सुन रहा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि राघव जी की तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आ जाइए मेला देखने, आपको स्पेशल मैं पूछ रहा हूं। तो जी बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी। और यहां पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, राजू सोनी हरपुर से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना बजा दो, और मेरा नाम कृष्णा कुमार है और मुझे गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है, और जी आपके भी गाने की फरमाइश को पूरी की जाएगी। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और गाना सुनना चाहते हैं, लिख रहे हैं संजय कुमार पूर्वी चंपारण से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं दोस्त तरबेज आलम, समीर शमशेर आलम के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, और गाने की बोल है दिल्ली गया परदेसी कोई रुक ना था, लास्ट मूवी का गाना है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रुमझिम 90.4 FM में। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:57 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको बता दूं कि आप हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रुमझिम के वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और यहां हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं दिनेश जी की, भारती जी मेरे दिल में आपके लिए प्यार आज भी है, माना कि आपके मेरे प्यार पर शक आज भी है। नाव में बैठकर धोए थे हाथ तालाब के पानी में, उस तालाब में तेरे हाथों की मेहंदी की खुशबू आज भी है। और भारती जी आपके लिए दिल से है, और ये शायरी के लिए आपका दिल से धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम भी लेट कर रहे हैं, मैडम जी हमारा गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और पर मैं आपके गाने को नहीं बजा सकती। मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र धाकड़ जी, क्योंकि मैंने आपके गाने को गुरुवार को ही प्ले किया था। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मैं अरुण चौधरी ग्राम असनी से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने की फरमाइश को पूरा किया जाएगा। और यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं भारती दी, मैं ताकेश भारती बक्सर से, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपको बता दूं कि आपके गाने की फरमाइश कल पूरी करूँगी, क्योंकि कल आपके गाने की फरमाइश पूरी हो रही है। और इसी के साथ यहाँ मेरे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रही हैं कि शिवानी कुमारी थामे से जुड़ी हुई हैं और गाना सुनना चाहती हैं, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि गाने की बोल है, धनिया धनिया बनबू कनिया दिल बा दुल्हनिया। और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527881 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527881 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 98527888। यदि कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है हेलो हेलो नमस्ते मैम फॉर्म। और लिख रहा है कि मेरा नाम हरिओम गोस्वामी विलेज मोहनपुर डिस्ट्रिक्ट आजमपुर उत्तर यूपी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा जी चुपके से आकर मेरे दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बनकर बिखर जाते हो। कुछ यूँ चला तेरे प्यार का जादू, सोते जागते अब तो आप ही आप नजर आते हो। मनोरमा जी के लिए दिल से। और जो कि लिख रहा है हो सके तो रानी मुखर्जी की आवाज़ सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपने याद किया और मैं आ गई। और मैसेज करने वाले हैं धनीश कुमार मिश्रा जी जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहा है का हाल बा मनोरमा दीदी। तो जी बिल्कुल ठीक बा, रुआ बताएं कि रुआ कैसन बानी। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्ते, क्या हाल है जी। तो जी मैं ठीक हूँ और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो जी आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर और वेट करिए, इसके बाद आपके गाने को ही हम प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि भारती दीदी और लिख रहे हैं कि मैं प्रिया कुमारी दिल्ली से और मुझे भी गाना सुनना है और मेरे भी गाने की फरमाइश है जो कि लिंक के माध्यम से भेज दिए हैं। और लिख रहे हैं कि भारती दीदी दोपहर समाचार के बाद मेरा गाना बजा दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि प्रिया जी की तरफ से था, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि सुपर हिट गाना है, गाने में चार चांद लग गया आपका जब गुनगुनाए तो आपके गुनगुनाने से। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र धाकर, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग बोल दीजिएगा दीदी, और बहुत ही अच्छा लगा था। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि का हाल बा मनोरमा जी, नमस्कार, प्रणाम बा रुबा के जी। तो हाल तो ठीक बार, हमरो तरफ से रुबा के प्रणाम बा। और मैसेज करे अलावानी, और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी, और बहुत ही बेहद लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं भूख प्यास निकट नहीं आवे, लड़का जब किसी लड़की से प्यार हो जावे, मम्मी रोज यह प्रार्थना गावे, कौन है वो चुड़ैल उसका सन्यास हो जावे। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं सन्यासी रंजन जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि, और यहाँ पे वॉइस के माध्यम से कुछ भेजे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हमारे प्रिया बेटी के गाने पे गुनगुनाए आप लोग, इसके लिए दिल से धन्यवाद।
0: और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया है जो, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दीदी हमार गाना ना बाजी का, तो जी जरूर और गाना भी बाजी। और मैसेज करने वाली हैं जो कि मैसेज करने वाले हैं शिवानी कुमारी थावे से, जो कि गाने की फरमाइश लिंक के माध्यम से भेजी हुई है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:23 हो गए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, और यहाँ पे मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं कि दिल से शुक्रिया मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाली है शिवानी कुमारी थावे से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, धनेश कुमार मिश्रा जी, जो कि लिख रहे हैं कि चूँकि लिख रहे हैं शादी में एक आदमी बहुत देर से खाना खा रहा था, किसी ने पूछा कितना खाओगे, वो बोला मैं भी खाते खाते परेशान हो गया हूँ, लेकिन क्या करूँ, कार्ड में तो लिखा है कि खाना खाने का समय 7 से 10 बजे तक है। और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि मैं अरुण चौधरी ग्राम असनी से, और लिख रहे हैं कि दागदार मूवी का मुझे भी गाना सुनना है, तो जो कि लिख रहा है मैडम जी मेरा गाना नहीं बजाइए क्या, तो जी आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर और वेट करिए, उसके बाद आपके गाने को हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं हाय मैम कैसी हैं, माय नेम इज सिमरन फ्रॉम गोपालगंज से, एंड मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि अरुण जी, जो कि लिख रहे हैं कि मैडम मेरा गाना नहीं बजा अभी तक, तो चलिए अरुण जी आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे खूबसूरत सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि अरुण चौधरी जी की तरफ से था, जो कि यहाँ पे मैसेज पहुँच गया लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, आप सभी को फरमाइश किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे फरमाइश किए हुए गाने को जरूर सुनवाएंगे। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी अरबिया से।

मैसेज पहुंच गया है सिमरन जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी गाना प्ले कर दीजिए। तो जी आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुंची हुई है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि सोनू सऊदी अरबिया से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं कि मेरे भी फरमाइश को पूरी कर दीजिए, जो कि फरमाइश लिंक के माध्यम से है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के प्यारा सा सॉन्ग।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।

छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस में, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। आ रहे हैं यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं मनोरमा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फरमाइश को पूरी किए, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। आ रहे हैं यहाँ पर मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, और लिख रहे हैं कि मैं विक्रम चौहान नवादा से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। आ रहे हैं यहाँ पर मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लिख रहे हैं कि मैम भोजपुरी में शायरी है, और लिख रहे हैं कि हम तो उससे सच्चा मोहब्बत जरूर करें कि तू हमसे सच्चा मोहब्बत, और लिख रहे हैं कि हम तो उससे सच्चा मोहब्बत जरूर करब कि हम तो उससे सच्चा मोहब्बत जरूर करब तू लॉयल बनबू तो बताओ कि हम तो उससे सच्चा मोहब्बत जरूर करब तू लॉयल बनबू तो बताओ हमके राम बने में कोनो दिक्कत नहीं है तू सीता बनबू तो बताओ। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि पाजी यूपी चौहान से मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए मनोरमा मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से मैं भी जुड़ गई हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह, जिला सिवान महाराजगंज के छोटे से गांव पकवलिया टोला बलुआ से हूँ, और लिख रहे हैं कि रेत पर नाम कभी टिकते नहीं, लोग कहते हैं कि हम पत्थर दिल हैं लेकिन पत्थरों पर लिखे नाम कभी मिटते नहीं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और जो कि लिख रहे हैं कि उन्होंने कहा बहुत बोलते हो अब क्या बरस जाओगे, हमने कहा जिस दिन चुप हो गए तुम तरस जाओगे। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार सिंह जी जो कि जिला सिवान महाराजगंज के छोटे से गांव पकवलिया टोला के रहने वाले हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम कैसी हैं, माय नेम इज सिमरन फ्रॉम गोपालगंज से एंड मुझे भी सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग का बोल है बॉलीवुड सॉन्ग है, और लिख रहे हैं कि डेडिकेट है आपको मनोरमा मैम एंड ऑल रेडियो फ्रेंड को, तो प्लीज़ मैम बजा दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं जो कि लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग। सब्सक्राइब

0: कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
1: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
0: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
1: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
0: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
1: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
0: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: तब भौजी, आज सुबह से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

छोटी सी ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच मैम गाना प्ले करने के लिए, और मैसेज करने वाली हैं सिमरन गोपालगंज से। तो और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मैं सुबोध कुमार पिपरा नारायण से, और लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, प्लीज़ हेलो मामा जी मेरा गाना चला दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे, बस कुछ देर वेट करिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते क्या हाल है, और लिख रहे हैं कि मेरा भी फरमाइश चला दीजिए। और मैसेज करने वाले लिख रहे हैं कि मैं जसवंत कुशवाहा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे फरमाइश पूछी हुई है जो कि लिंक के माध्यम से है, और बोल रहे हैं कि जसवाल कुशवाहा जी की प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे ही।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जो कि मैसेज पहुंच गया, जो कि लिख रहे हैं कि थैंक यू मैम गाना प्ले करने के लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग मैम। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार जी, जो कि लिख रहे हैं का बताएं कितना कहर लागेलू, कि का बताएं कितना कहर लागेलू, रतिया में बनारस के शहर लागेलू। तू माना चाहे मत माना ए मोर करेजा, तू माना चाहे मत माना ए मोर करेजा, कि तू माना सच कहीं तो तू काला साड़ी में जहर लागेलू। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार सिंह जी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं सुबोध कुमार पिपरा नारायण से मैं भी जुड़ गया हूँ, तो प्लीज़ दीदी मेरा गाना चला दीजिए। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और गाने के बोल हैं, आपके गाने को हम प्ले करेंगे। और इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि और यहाँ पे लिख रहे हैं कि गीले सिकवे मेरे दिल से ना लगा लेना, जो कभी रूट तो मुझे मना लेना, जिंदगी का क्या पता कल हो ना हो, लेकिन जब भी मिलो मुझे गले से लगा लेना। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि धनेश कुमार मिश्रा जी हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैम प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिए। और गाने के बोल हैं आर्मी लवर और टुनटुन यादव की आवाज़ में। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM के।

0: तो श्रोताओ, अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस मैसेज।
1: हम और गणेश बेकर्स में एक ही साथ सुन रहे हैं, गाना बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा बताइए।
0: तो गाना तो बहुत ही अच्छा था और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं कि भोजपुरी सॉन्ग सुन के बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर जब आप बजाते हो मनोरमा मैम, जो कि लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, और यहाँ पे सबके तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच रहे हैं जो कि लिख रहे हैं कि बाय बाय, जो कि लिख रहे हैं कि बाय बाय मैम, फिर कल मिलेंगे। तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का, तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी से लूँगी मैं विदा, और मेरे तरफ से ये प्यारा सा सॉन्ग, और फिर मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
11: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
9: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
11: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
9: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
11: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
9: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
12: All right.

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
6: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
7: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
6: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
8: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
9: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

राम नाम आधार बा एह जीवन में यही से कवि कहतड़े देखी का कहतड़े राम नाम रस पिया राम नाम रस पिया भैया हंसी हंसी ना तो फंसी जाइब फंसी जाइब।

0: आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से

0: परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 99393-65923।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
9: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
10: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
11: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
10: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
11: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
10: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
11: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
10: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
5: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
6: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: जी मैम,
6: आप सरफरोज जी बोल रहे हैं ना?
7: जी मैम।
6: जी देखिए, अब आपको पहचानिए ना, नाम बताना नहीं पड़ता आपको।
7: जी मैम, बहुत खुशी है और यही बोलना चाहेंगे कि मतलब आपको तो समझना चाहिए, मतलब कि अगर रिंग होकर कट गया तो कैसा लगता है आदमी को।
6: जी।
7: आज हमारी भारती मैम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या?
6: आपकी भारती मैम भी रिकॉर्ड करेंगी इसके बाद।
7: अच्छा, 12 बजे से।
6: जी जी। तो और बताइए, आप ठीक ठाक है ना?
7: जी मैम, हम ठीक है, लेकिन 1 घंटे से 11:02 से ही लगा रहे हैं, निकलो बिजी बिजी।
6: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, आप तो लग गया, बता दीजिए फरमाइश अपनी।
7: जी फरमाइश, आरजू मूवी से गाना सुनाइए।
6: कौन सा?
7: जी गाने का बोल है, दोस्ती करते नहीं दोस्ती हो जाती है। और मैं उस दिन तो आपको रानी जी बहुत मतलब अच्छा बात बता रही थी, सुने? हाँ, तो हम सुने बहुत ज्यादा, मतलब देर तक बात हुआ लेकिन अच्छा हुआ, आपको अच्छा बता रही थी। लेकिन एक बात है, उनको हम बता दें, अभी सुन रही होंगी तो सुन लेंगी, कि जो पुराने लोग हैं आपके, मतलब पुराने दोस्त रेडियो का, वो तो समझते हैं, लेकिन जो नए हैं वो समझ नहीं पाते हैं। और आप लोग आरजे हैं तो आपको सब देख कर चलना पड़ेगा ना, वो तो बात अच्छा बोल रही थी, मतलब जीवन तो यही बात बोलना चाहेंगे। और आपको तो हम यही बोलेंगे, आपको कभी टाइम अगर मिले तो एक बार आप भी कॉल करके देखिए, इस शो का कुछ अलग ही मजा है। जी मैम, प्ले कीजिएगा या नहीं, लेकिन एक बार करके देखिए कॉल, और भारती मैम रिकॉर्ड करेंगी।
6: जी जी, हम समझ रहे हैं कि आप किस बातों को।
7: नहीं मैम, वो बजे ना बजे अलग बात है, लेकिन अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस शो में, इसलिए तो हम इतना कोशिश करके इस शो में लगाते हैं।
6: जी जी, चलिए जब आप बोल रहे हैं तो मैं भी करूंगी।
7: जी मैम, 300 से ऊपर हो गया मेरा आज। समझिए मेरा हाथ दुख गया है, मतलब दर्द कर रहा है।
6: इतनी मेहनत करनी पड़ जा रही है
7: बहुत ज्यादा। और एक लड़का से भी बोले कि तुम लगाओ भाई मेरे फोन से, लग जाए मेरा हाथ दुख गया था। तो समझिए आपके शो में जुड़ने के लिए हम क्या क्या किए।
6: चलिए तो मुझे भी फल बनता है कि आपके गाने को जल्द से जल्द प्ले करें।
7: देखिए मैम, चलते चलते यही बोलेंगे कि आपके पास अभी तो 2 दिन का समय है, मतलब बना सकती हैं कॉल पर।
6: जी जी बिल्कुल।
7: और हमारे बातों को कुछ गलत लगा हो उसके लिए दिल से सॉरी।
6: नहीं नहीं, कोई बात आपका गलत नहीं लगा। तो इसी के साथ हम आपके गाने को प्ले करते हैं।
7: ओके मैम, बाय।
6: जी बाय। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

जी सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
6: जी जी, नमस्ते मैम।
7: जी नमस्ते,
6: एक गाना सुनना था। हेलो
7: जी, गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
6: पवन जी नाम है।
7: और कहाँ से?
6: पवन जी हथुआ से, दुकान मंदिर।
7: अच्छा जी, तो पवन जी कैसे हैं आप?
6: ठीक है मैम। भाई ये फोन लगाते लगे 91-92 बार लगा है आपके पास। हाँ, भगवान से बात करिए चाहे आपसे बात करिए, बराबर है।
7: अच्छा जी, वैसे आप लोग से बात करके मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता।
6: जी जी, हम भी सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
7: जी जी, तो पवन जी, क्या आप हेलो मैचर्स में पहली बार कॉल किए हैं?
6: ना, दो बार किए थे। आईटी सरकार हो गया।
7: अच्छा जी, तो हमको लगता है कि शायद मुझसे पहली बार बात हो रही है आपसे।
6: मनोरमा जी बोल रही हैं।
7: हाँ जी।
6: ना, अगला बार हुआ था शुक्रवार को।
7: अच्छा जी, तो नोटिस नहीं किए होंगे।
6: जी जी।
7: और बताइए पवन जी, कौन सा गाना सुनिएगा आज?
6: हर दिल जो प्यार करेगा।
7: जी, गाना तो
6: आप ही का गाना, आप ही के रेडियो रेंज से सुने हैं।
7: अच्छा,
6: हेलो चॉइस। हाँ, पता है कि ना, इसको कलम पर लिख लेते हैं, याद रहेगा।
7: जी जी, तो पवन जी, आप ये मुझे गाना गा के बता सकते हैं?
6: ज्यादा सॉरी है, 2 लाइन का अच्छा नहीं लगता है।
7: कोई बात नहीं,
6: याद रहता कम ना।
7: नहीं नहीं, मुझे आपके मुंह से 2 लाइन ही सुनना है, कि आप मुझे गा के बताएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
6: जी जी, हर दिल जो प्यार करेगा। इतना ही तो याद है।
7: अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम आप गाना याद करके रखिएगा, हम आपसे गाना सुनेंगे आपके।
6: जी जी, जरूर जरूर।
7: जी, तो पवन जी ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
6: आपको, सबसे पहले आपको
7: जी थैंक यू,
6: पूरा पूरा जिला गोपालगंज जिला लोग को जो सुन रहे हैं इस लोग को भी।
7: ओके पवन जी, तो चलिए इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
6: जी जी
7: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी नमस्ते
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी बारहवी सुंदरपुर सुंदरी।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, अपन बताइए।
0: जी हम भी बढ़िया।
1: भक्ति गाना सुना दी अनुदुबिया के बारे में?
0: कौन सा बता दीजिए।
1: कोई भी।
0: अच्छा, कोई भी। और गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
1: ओके
0: बालभी
1: जी,
0: तो चलिए आपके गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते।

0: आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
1: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
0: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
5: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा, मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: Now pick your phone up.
11: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो, नमस्कार
13: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: मैं मास्टर नसार अहमद लखी दरबार दिलर।
13: जी, कैसे हैं आप?
12: बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
13: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
12: आप मनोरमा जी या भारती जी?
13: जी मैं मनोरमा।
12: चलिए, थैंक यू, बहुत खुशी की बात, आपसे आज आपसे बात हो रही है। भारती जी से तो बात हो चुकी है मगर आपसे आज बात।
13: अच्छा जी, तो क्या आप रेडियो रिमझिम में पहली बार कॉल किए हैं?
12: नहीं, जब से रेडियो रिमझिम चालू हुआ तब से मैं सुनता हूँ, आज भी सुनता हूँ। और शिकायत यही है कि मैं जितने बार मैंने फरमाइश किया कोई भी गाना, एक बार भी नहीं मेरा। पिछले हफ्ता मैं फोन फरमाइश किया था लता जी का गाना, उससे पहले भी, और एक बार भी ना रिपीट में बजा, सुबह बजा ना शाम। दुश्मनी है क्या?
13: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जब आप रिकॉर्डिंग कराएं तो बची होगी कॉल आपका।
12: हम तो सुने नहीं, हो सकता है कहीं, मान लिया कि मैं घर पे ना हूँ इस वजह से कहीं बच गया होगा। नहीं मैं, मगर फिर भी रिपीट में मैं 9 बजे से वाला जो प्रोग्राम चलता है वो हमेशा सुनता हूँ। काम वाला कहीं इधर उधर हो गया होगा, 9 बजे वाला तो मैं हमेशा, 9 बजे दिन वाला मैं फ्री रहता हूँ उस टाइम में।
13: जी जी, जब आप रिकॉर्डिंग करा रहे हैं तो गाना तो जरूर बजेगा।
12: नहीं यार, ये भारती जी का जो भी प्रोग्राम हो, हम जो भी फरमाइश दिए हैं भारती जी के नंबर पे रिकॉर्डिंग में हुआ है। आपका पहली बार आज मैं आपसे रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ यही गाना।
13: चलिए बढ़िया है, तो फिर आगे क्या है आपकी फरमाइश?
12: फरमाइश वही है, लता जी का कोई अच्छा गाना सुना। बता दीजिएगा अब तक बनेगा तो हिंदी गाने।
13: जी मैम, जी जी मैं तो सुना ही दूंगी, लेकिन आप इतना मुश्किल से कॉल किए तो आप बताते तो बहुत ही अच्छा होता।
12: वो अब आपसे बात हो रही तो गानों में भूल गए हैं आप, फिर वो गाना

0: गाना हम फरमाइश किया उस गाना तो रिपीट करेंगे तो ठीक नहीं होगा,
1: नहीं होगा आप
0: नहीं तो हाँ नहीं तो सुना दीजिए वही जब बीजी क्या है नई दुनिया बसा लेते हैं लोग तो नई चेहरे लगा लेते हैं
1: जी। तो क्या ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे?
0: मैंने आपके भी ये स्टाइल हो गया है किसी से भी गाना सुन लेती है ठीक है ओके। मैं आवाज तो ठीक नहीं मगर मैं आपके लिए सुना देता हूँ। जब बीजी नई दुनिया बसा लेते हैं नई एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं
1: सही गाना जी जी। गाना तो आप बहुत ही अच्छा गा रहे हैं।
0: नहीं गाना नहीं गाते हैं मगर आपकी गीत सुने क्या ठीक है। मैं हम पुराने गाने का बहुत अच्छा मैंने मन कुछ ऐसा होता है लता जी का ज्यादा गाना मैं सुनता हूँ। ये तो मेरा पहला कॉल है
1: जी जी आपका पहला ही कॉल है।
0: हाँ तो थोड़ा सा मेहरबानी कर दीजिए गाना बजा दीजिए
1: जी।
0: तो आपसे तो शिकायत हो रहा है क्या कि हमारा नाम प्रचार कर दिया? अरे भाई रेडियो जो सुनेगा मोबाइल पर सुनेगा तो नाम पे ऑटोमेटिक प्रचार हो सबका तो नाम पूछा जाता है।
1: जी जी मेरा नाम हक्या रानी मुखर्जी की तरह आवाज है तो वही
0: जी जी रानी मुखर्जी का भी आवाज सुना आपका भी नाम प्रचार हो गया है क्या आपकी आवाज रानी मुखर्जी जैसा है
1: जी।
0: और रेशमा जी है जो क्या नाम है पठानपति का वो बोलती है क्या कि हमारा नाम आप लोग प्रचार कर दिया? अरे भाई तो नाम पूछा जाएगा तो प्रचार हो गए करेगा
1: जी जी।
0: तो उनको सुनाना है रेशमा खातून को पठानपति और कुआ के रानी जी को और निशा भारती है उनको और निशा पांडे जी है मैं उन सभी और बाकी जितने भी लिसनर सुन रहे हैं रेडियो रिंगिंग।
1: ओके जी तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं
0: जी। अगर कोई बात में अगर कोई कुछ कहने में गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं है तो इसी के साथ गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
0: थैंक यू
1: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम।
0: जी हम जाकिर हुसैन जादवपुर गोपालगंज से।
1: जी जाकिर जी कैसे?
0: हम ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: जी मैम, तो मैम जाना वाला सुनना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल बता दीजिए।
0: मैम बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, बहुत ज्यादा।
1: जी
0: बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है फोन लगाने के लिए।
1: अच्छा जी।
0: हाँ बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं।
1: चलिए कोई बात नहीं, लग गया ना कॉल अब।
0: तो मैम सुनना चाहते हैं हमारे जिया के पुकार सजनवा बैरी भैले हमार।
1: जी जी गाना तो बहुत ही अच्छा।
0: जी मैं ये गाना सुनना चाहते अपने दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फिर आलम, मेराज आलम, ईशू पल्ली, जितलेश शर्मा, मुकेश शर्मा, रविंदर शर्मा और हमारे रेडियो में जितना होता है परिवार है।
1: तो अभी क्या हो रहा था?
0: बस कुछ नहीं मैम, क्या करेंगे।
1: तो मौसम कैसा है उधर का?
0: जी मैम काफी धूप है, गर्मी हो रहा है।
1: जी जी, तो चलिए जाके भी तो फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
0: ओके
1: जी सुनते।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।
8: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
2: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
8: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
2: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
8: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड, गोपालगंज, या आर्ट्स कॉलेज रोड, नेशनल IB के सामने, गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड, सासामुसा, प्रभु मार्केट, मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट, हथुआ, थाना रोड, भोरे, थाना चौक, बरौली, स्टेशन रोड, सिद्धवलिया और थाना रोड, मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
2: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
8: खादी, आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
9: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
10: Now pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up. Hello. Now pick your phone up.
11: Hello. तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
13: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
12: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
13: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
12: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ, इंदरों में बाजी का। मुझे गाना सुनना है बंजारन मूवी का, कब आएगा मेरे बंजारन।
13: अच्छा, और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
12: जी सबसे पहले आपको मासूम कौशर, जुनेद, समरन भाई, अरमान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लक्की भाई, रोबीना जी, जीतू जी, रीना जी, गिरिया जी, सरिता जी, अमिता जी, सुनी जी, सलेहा जी, सबनम जी, और सभी को सुनाना चाहता हूँ।
13: ओके जी, तो चलिए फिर आप गाना हम प्ले करते हैं।
12: जी थैंक यू।
13: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग जिम 90.4 एफएम में।
1: आपका भी मैम, सलाम अलैकुम, क्या खैरियत है?
0: जी वालेकुम अस्सलाम,
1: खैरियत ठीक है?
0: जी जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता हो गया?
0: हाँ जी नाश्ता तो हो गया, और आपका हुआ?
1: हाँ मैं पानीपत से बोल रही हूँ।
0: अच्छा जी, और आपका नाम?
1: मेरा नाम जोया है।
0: अच्छा जी, अच्छी लगता है आपसे दूसरी बार बात हो रही है।
1: हाँ, और सब बताइए।
0: जी सब बढ़िया है, आप ठीक?
1: हाँ मैडम, मेरे को गाना सुनना है।
0: जी बिल्कुल बता दीजिए।
1: ओ दिल की अरमां आंसुओं बह गए, नया गाना जो नहीं हुआ है
0: जी
1: वही सुनना है।
0: तो क्या आप मुझे गा के बताएंगी?
1: हाँ, दिल की अरमां आंसुओं में बह गए, यही वाला सुनना है मैडम।
0: अच्छा, और जोया जी ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: हाँ, सबसे पहले आपको और भारती मैम को और जितने सुनने वाले हैं सबको सुनाना चाहती हूँ। प्यारा सा बाप है उसको भी सुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा जी, आप तो बाबू कैसे हैं? वो तो ठीक है।
1: हाँ वो ठीक है।
0: चलो चलिए बढ़िया। हाँ तो जोया जी चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
1: हाँ
0: चलिए फिर तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
10: जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: जी मैम, मुझे गाना सुनना है।
10: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
9: मैं गुलाम हुसैन बोल रहा हूँ, दरोगे बाजी का। मुझे गाना सुनना है बंजारन मूवी का, कब आएगा मेरे बंजारन।
10: और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
9: जी सबसे पहले आप तो मासूम, कौशर, जुनेद, समरन भाई, अरमान भाई, जगदीप भाई, आयुष भाई, प्रिंस भाई, लक्की भाई, रवीना जी, जीत जी, मीना जी, गिरिया जी, सरिता जी, अनीता जी, हिमी जी, सलेहा जी, सबनम जी, ऐसा भी कुछ मिलना चाहता हूँ मेरे परिवार को।
10: ओके जी, तो चलिए फिर आप गाना हम प्ले करते हैं
9: जी। थैंक यू
10: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते।
1: कैसे हैं मैम?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम भी ठीक हैं।
0: तो क्या हो रहा है?
1: अभी तो कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा जी,
1: आज जल्दी कॉल लग गया है।
0: जी, तो कॉल लग गया तो बता दीजिए अपनी फरमाइश।
1: मैं तो देशभक्ति गाना सुनवा दीजिए।
0: अच्छा जी, कोई भी?
1: नहीं हम बता रहे हैं।
0: जी बिल्कुल बताइए।
1: देश न चल देश न चल।
0: कौन सा?
1: देश न चल देश न चल, देश मांगता है कुर्बानी।
0: क्या ये गा के मुझे बताएंगी?
1: याद नहीं है।
0: चलिए कोई बात नहीं है। वैसे आप अपना नाम बता
1: दीजिए। नहीं याद है।
0: अच्छा जी, कोई बात नहीं है। वैसे अपना नाम बता दीजिए।
1: मनीषा कुमारी, चरिया सुंदर।
0: अच्छा मनीषा जी, और ये गाना जो बताएंगे वो किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: जी मैम, आपको और को, भारती मैम को और अपनी दीदी को, छोटे भाई को और रेडियो रिंगिंग सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी मैम। मैम दूध वाला कब बजेगा?
0: जी आज बजेगा।
1: चलिए
0: जी, तो फिर प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
1: जी मैम, बाय मैम।
0: Bye.

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं
11: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी।
12: हेलो
13: रेडियो रंजीम
12: जी, नमस्ते प्रणाम और राधे राधे।
13: जी नमस्ते प्रणाम, राधे राधे। अभी रुवा की याद करत रहे हम।
12: अच्छा जी
13: जी, अभी सरस्वती जी से बात होत रहा, रुवे बारे में बात होत रहा।
12: अच्छा, क्या बात होत रहा?
13: ये बात होता की रानी जी बहुत ही अच्छा बात करे, बहुत कुछ सिखा रही नहीं हमनी के।
14: गजब बात कही नहीं
13: जी।
14: और बताई रोवा कैसन वानी
13: जी? हम तो बिल्कुल बढ़िया बात।
14: और बताई नाश्ता वास्ता कर ले वानी?
13: जी जी नाश्ता हो गई बार। और भैया की ना?
14: और ना हम अभी जस्ट पूजा करके अभी जस्ट चले और इन्हें की और बात अब हुई होने तो बातें ना हुई दशहरा काफी देर दीजिए चले ला और सोच नहीं अगर पता ना उन्हें टाइम मिली की ना मिली, इन्हें मिलल बता टाइम के मौका खाली ना जाए कहीं रोवा की याद कर ले सही ना क्या सही?
13: जी जी बिल्कुल रानी जी, मतलब बस बात करके इतना खुश रहने की हम का ही बताए, मतलब रोज बात करके बहुत ही अच्छा लगे रहा।
14: और हमके पता नहीं कि रहुआ हमके का कहिए बनी, हम सोचे नहीं कि हम कसने सिखाते नहीं एक रिलेटिव बात राउर जौन में है ना तो और जौन राउर विचार और जितना राउर तरीका और कोशिश रहता ना हमके चाहता कि हमके पूरा सपोर्ट होके के चाहिए रहुआ खातिर
13: तो हमारी समझी
14: ऐसा बात नहीं के और हमने के तो थोड़ी सी जरिया बा और कोशिश करावरे सावरे मेहनत काम करी बस थोड़ा सा सहारा हमने के दे देता नहीं सका।
13: जी जी सहारा थोड़ा ना बहुत देता नहीं लोग ऐसे की सोच लाओ रुआ लोग हम कुछ
14: बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुशी होता है की रुआ स्टार्टिंग में रुआ शो करता नहीं और लंच के बाद वहाँ गया होता नहीं, दोनों आदमी की आवाज सुन के काफी सुकून मिलेला और पता बा जब रुआ ना आवेनी तो वहाँ से वहाँ का पूछाला जब वहाँ का ना आवेनी तो वहाँ से वहाँ का पूछाला काफी अच्छा लगे एक दूसरे के प्यार।
13: जी जी तो रानी जी आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक बा ना?
14: हाँ सब कोई ठीक बा दी रुआ बताई रुआ कैसन बानी और हमारा घर दूदू को क्यूट क्यूट भतीजा वालो
13: अरे वाह
14: दिन भर रहू में टाइम कटत रहेला रहुआ की सुनते हुए उनको भी खिलावत रहे नहीं बस। और पता वादी जब स्टार्टिंग में रहुआ शो करता नहीं काफी अच्छा लगा था और रहुआ स्टार्टिंग में स्टार्ट भी करता नहीं और जन गाना की जो ना सिलेक्ट करता नहीं स्टार्टिंग में काफी खूबसूरत रहा था और बहुत सुन के अच्छा लगा था। दो गाना सुन ले स्टार्टिंग में दो दिन से स्टार्टिंग के लिए बनी दोनों गाना जबरदस्त रहा बस दिल लगा लिया और दिल दे सनम मूवी से एक सॉन्ग बजे ले रहा है की अक्सर इस दुनिया में अनजाने सुनी थी काफी अच्छा लग रहा है काला जरूर बा गाना के बारे में रहो पता बा काफी अच्छा लग रहा है सुन के। और पता बा एक तो बात बा दी रहो लोग सुनते हुए कोनो भी काम करे के रहला तो हमनियो के ना बुझाला हमनियो के काम कर ले तो सुनते हुए।
13: जी जी रानी जी तो फरमाइश बता दे टाइम भी।
14: हाँ अब आरती जी कहाँ बानी कभी आजकल हमारा से बात नहीं करत रहोगे से बात करता नहीं तुम के दिल के भीतर बानी
13: भी रिकॉर्डिंग अब हुई।
14: अच्छा तो ये गाना सुना दी गाना बहुत प्यारा हिंदी सॉन्ग सोचे दो लाइन लोगों का गा दी।
13: जी जी बिल्कुल
14: जी

0: ये गाना सुनने के बाद ही
1: जी, गाना तो बहुत ही अच्छा बा और डेडिकेट भी करे के साथ है नी?
0: जी जी, और ये गाना सबसे पहले रहुआ के और हमने की लिस्ट में पहले रहुआ वानी तो रहुआ के और भारती दी के और कुछ रेडियो दोस्त वानी लो आज बिना देरी किए वो का नाम ले लेता नहीं जी। उत्तम सोनी जी वानी, भास्कर जी वानी, वीरेंद्र जी वानी, उमा शंकर जी वानी और परवेश जी वानी और एक बड़हरिया से और बहन तो बोले हैं और बहुत खुशी मिली हुआ वहाँ के पप्पू नावा रानी की तरफ से गाना में वो वानी, सुब्रजली जी वानी और शाहजहाँ जी वानी, हजरत जी वानी और करिश्मा जी वानी और रेशमा जी वानी और बाकी जितना सुना था नीले सबको रानी की तरफ से।
1: जी जी, तो चलिए एक के साथ गाना हम प्ले करता नहीं।
0: जी जी

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी
1: जी। नमस्ते,
0: क्या हाल हुआ
1: जी? ठीक बा, अपन बताए कैसन बानी?
0: ठीक बानी हम। खाना वाना हो गया?
1: हाँ जी, खाना तो हो गया। अपन बताइए।
0: हम ये हो गया की ना बनी
1: नहीं दीदी?
0: करिश्मा कुमारी थी नारायण से।
1: अच्छा,
0: भारती जी कहाँ बनी?
1: भारती जी बानी खान करते नहीं।
0: और सब ठीक हुआ ना?
1: जी जी, सब बढ़िया बा।
0: चलिए ठीक है, हमारे गीत सुनने को आते।
1: बता दी
0: गाँच बता गाय की ना गई
1: ना गा के बताइए। अच्छा लगी
0: सास के नखरा सास अपने भिलाने के बाड़ी।

0: जीरो तो बड़ी अच्छा गावत नहीं
1: है। अच्छा गाँव सुनी।
0: आई गाना क्या क्या सुनाए की बिचारते नहीं।
1: हाँ सबसे पहले रहुआ के भारती दीदी के, रोनी दीदी के, रेशमा जी के, उत्तम सोनी जी के, स्पेशल हमारे भैया के। हाँ हमारे बेटे भी सुनी है, मनीष भी सुनी है, जितना श्रोता बनी सब के सुनी।
0: चलिए तब एक के साथ गाना हम प्ले कर देनी।
1: ठीक बाय
0: जी बाय। सुनत रही सबके साथ रेडियो 90.5।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM का।
1: जी मैम, मैं प्रदीप सहनी बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: कौन सुनना था मैम?
0: जी बता दीजिए।
1: आई मिलन की राधा, मन में तोरा मीरा का मोहन जो सॉन्ग है ना उसका।
0: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
1: जितने परिवार है जितने श्रोता जन है सभी को सुनाना चाहते
0: हैं। ओके जी, तो चलिए फिर आपका गाना हम प्ले करते हैं।
1: जी
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सब

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4।
1: माइको जी स्वागत है कॉल उठाने के लिए।
0: जी
1: तो भाती जी का हाल चल रहा?
0: हमारा हाल चल रहा ठीक, बराबर बताए।
1: क्या करें, गर्मी में परेशान बनी है वो लोग, पानी से परेशान बन। और घर परिवार में कैसन बा समाचार?
0: जी घर परिवार में सबके उठे एक बार।
1: और सब बताए?
0: और सब तो बढ़िया बा एकदम।
1: लिसनर लोग खाली आवाज सुन ला परेशान रहे लोग। एक बार गाना बटे जन्मी
0: बताए,
1: गंगा की कसम मैं हूँ बावरा, ये क्या कहते हैं, जो किस तरह सुनवाया गया है, ये गजरा वाली, ये झुमक वाली, लहना वाली, मैं हूँ बावरा, पावला हूँ बावला।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ये गाना अपने के मनोरमा जी के तमाम जितना देशों सब को डेडिकेट बटे जन नहीं। तो गाना सुनावल जा सर, कभी मौका मिली तो बतिया
0: जी। तो गाना रख प्ले करता नहीं
1: जी। तो सुनाओ के नमस्कार, मनोरमा जी को नमस्कार, सुनने वाला सब दोस्तों के नमस्कार बटे
0: जी। तो रेडियो रूम जी में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आई प्रोग्राम इंतजार करता नहीं।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: हमार बजरंगी पुलिस बन गई ने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

Yeah, I've been

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप हमें 90.4 FM रेडियो रिमझिम पर सुन रहे हैं। अब समय हो गया है समाचार संध्या का, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र
1: से। 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए दोनों देशों ने, रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना, 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता, क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच
3: भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
4: MOU on migration and mobility partnership.
5: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
4: एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आवर TST।
3: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें क्वार्टाइल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में क्वार्टाइल आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
8: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की कि केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
9: आज MOU में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहां पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है, जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहां से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहां पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहां पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहां से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
3: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1,300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
10: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
11: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवम्बर में वाराणसी से चार नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
12: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही, ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
11: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
13: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
11: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
14: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिन्स नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायो फिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरो साइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
15: गुड इवनिंग।
16: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
17: खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये बापू का सपना है और आत्मनिर्भर भारत की पहचान।
18: इस गांधी जयंती से गोपालगंज जिला खादी ग्रामोद्योग संघ आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर। सभी खादी वस्त्रों और तैयार कपड़ों पर 25% की विशेष छूट।
17: सूती, रेशमी, ऊनी और पॉली खादी वस्त्र, धोती, गमछा, लुंगी, साड़ी, कुर्ता, कंबल, शॉल, जैकेट से लेकर हर पारंपरिक परिधान तक अब उपलब्ध है खादी भंडार गोपालगंज में।
18: आइए खादी अपनाइए। जब आप खादी पहनते हैं तो सिर्फ कपड़ा नहीं, देश की आत्मा ओढ़ते हैं, क्योंकि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है।
17: खरीदारी और ऑफर्स के लिए विजिट करें खादी भंडार, थाना रोड गोपालगंज या आर्ट्स कॉलेज रोड नेशनल आईबी के सामने गोपालगंज। हमारी अन्य शाखाएं स्टेशन रोड सासामुसा, प्रभु मार्केट मीरगंज, गोपाल मंदिर गेट हथुआ, थाना रोड भोरे, थाना चौक बरौली, स्टेशन रोड सिद्धवलिया और थाना रोड मोहम्मदपुर। किसी भी शाखा पर पहुंचकर खादी उत्पाद की खरीद कर सकते हैं।
18: विशेष छूट 2 अक्टूबर से शुरू।
17: खादी आत्मनिर्भर भारत का अभिमान।
18: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
17: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
18: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
17: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
18: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
17: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
18: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
19: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
20: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
21: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
17: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
18: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
17: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
18: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
17: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
18: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
17: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
18: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: हमारा हौसला मजबूत रहा क्योंकि हमने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा।
5: और अब आया है मौका एक बार फिर से साथ मिलकर त्योहारों का जश्न मनाने का,
4: अपने उसी पुराने अंदाज में अपने मनोबल को बनाए रखने का और माँ को फिर से घर लाने का।
6: त्योहारों के मौसम में गहनों की खरीदारी पर आकर्षक छूट लाए हैं स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स। भरोसा आपका, हम कभी टूटने नहीं देंगे।
7: आए जरूर स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स, मुंसिफ कोर्ट के सामने, मेन रोड, गोपालगंज। प्रोप्राइटर अविनाश कुमार उर्फ बिट्टू जी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
6: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए।

0: पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 097 06 575।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
4: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: रेडियो रिमझिम।
1: सुनो दिल से।
2: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
3: जी मेरा असली नाम जॉनी।
2: और नकली?
3: नकली भी जॉनी।
2: इसके अलावा भी कोई नाम है?
3: जी हाँ, जानी। आपको ज्यादा पसंद है?

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: प्रीतु, तुम अपने नाम का अर्थ जानती हो?
1: नहीं तो तुम बता।
0: प्रीतु कहते हैं मौसम को।
1: और अरुण?
0: अरुण कहते हैं सूरज को, जिसके चारों ओर ऋतु घूमती है। कहाँ जा रही हो?
1: मेरा रास्ता छोड़ो।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

यूं ही तुम

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिद्म 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान से भेंट की। डॉ जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहमलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said during their meeting, the two sides identified new avenues for defence cooperation and deepen collaboration in nuclear energy.
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आज हमने ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
3: Secretary West in External Affairs Ministry C.B. George addressed media in New Delhi this evening on agreements signed between the two countries. Our correspondent reported that the discussions between Prime Minister Modi and the Swiss President were very wide-ranging. They reviewed the entire spectrum of India-Switzerland relations and discussed ways to further deepen bilateral cooperation in several areas, including trade and investment, innovation and AI, military exchange and defence production and nuclear energy. Both sides also reaffirmed their commitment to peace, diplomacy and reform of global institutions. The two leaders discussed the ongoing conflict situation in the world. President Draupadi Murmu met the President of the Swiss Confederation at Rashtrapati Bhavan today and hosted a banquet in his honour. Welcoming President Parmelin to India, President Murmu said that India and Switzerland enjoy warm and cordial relations based on the shared values of democracy and the rule of law. Vice President C.P. Radhakrishnan also attended the banquet. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's approach of multi-alignment enables it to engage with all important players in the world, including US, Russia and China. Dr. Jaishankar was addressing the 5th Cotillier Economic Conclave in New Delhi today on the theme India and the World, Adaptive by Design. He opined that the world is moving towards multipolarity whose architecture and geometry are very different from the way it used to be. Union Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbanand Sonowal today flagged off the first international cargo vessel since independence carrying methanol from Assam's Dibrugarh to Bangladesh. The move marks the revival of the Brahmaputra as an international trade route after nearly 8 decades and is expected to provide the Northeast with a direct, greener and more cost-effective trade corridor. The stage is set for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal, along with 1 Lok Sabha constituency in Assam. Polling for all 6 seats will be held tomorrow, while counting of votes will take place on Friday. The assembly seats going to polls are Madurantakam and Dharapuram in Tamil Nadu, Thattanchavady in Puducherry and Rajinagar and Nandigram in West Bengal. In Assam, voting will be held for the Nagaon Lok Sabha constituency. The Election Commission of India has rejected the allegations of leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, that Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has changed Form 6 of Special Intensive Revision, SIR, illegally and unilaterally. The Commission clarified that the declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the Supreme Court. In a social media post, the Commission also said that the order related to SIR in Bihar was issued with the unanimous approval of the Commission on 24th of June last year. President Draupadi Murmu has appointed Chief Justices of three High Courts as judges of the Supreme Court of India. In a social media post, Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal informed that the President appointed Chief Justice of Gujarat High Court, Justice Sunita Agarwal, Chief Justice of Delhi High Court, Justice Devendra Kumar Upadhyay, and Chief Justice of Telangana High Court, Justice Aparesh Kumar Singh, as judges of the Supreme Court. And that is the end of this news bulletin.
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण. रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से. आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं. सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें. उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप आरोप.

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: उत्तर बिहार का गौरव सारण प्रमंडल की शान गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
0: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: ए शंभु बाबा, अरे आजकल के सिचुएशन देखो तनी है, आंगनबाड़ी में बड़ा कुछ पोषाहार बांटा था लेकिन मौ खा जाता।
1: बबुआ गवा गाई आंगनबाड़ी स्कूल खुल गई बा, में खिचड़ी बनता, लेमन चूस मिलता।
0: लेमन चूस? अरे बाप रे, कोई चूसा नहीं आगे ना।
1: कहला से ए बाबा ई लड़का सब के बताई।
0: अच्छा रहुआ के ना
1: तहरा ना भेटा,
0: बुढ़ारी में खाए तो नस बैठ जाए। हाय हाय हाय आ हा, अरे बड़ा गजन होता है।

0: बुझला।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
2: आज तो फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी
2: आज फोन बहुत जल्दी लग गया हमारा।
1: जी लास्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए टाइम खत्म होने वाला है।
2: अरे मुझे लगा 12 बज रहा है, 12:30 बज गया।
1: हाँ, 12:30 होने वाला है।
2: और का फोन आया था? अच्छा, चले के बाद नहीं।
3: हेलो
1: हेलो
3: हेलो मैम।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। नाम बता दीजिएगा अपना। अर्चिता।
3: मैम गीत सुनना है।
1: गीत सुनना है? कौन सा गीत सुनना है आपको?
3: गाड़ी बजा रही है, सीटी बजा रही है।
1: जी जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
3: जितने
1: अच्छा जी, आप ठीक है ना?
3: हाँ।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
3: ठीक है,
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ठीक है, नमस्ते।
1: जी नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आप रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: मनोज भाई बोलते हैं
1: ना? भारती।
0: भारती जी, आज मनोज भाई ने किया है?
1: ना ना, वो जेल बने, आज ड्यूटी चेंज हो गई ना थोड़ा सा।
0: अच्छा ठीक है, पचपरा से बोला जी बोलते हैं।
1: जी जी, हाँ हाल चल बा?
0: ठीक बा, अपन बताएं।
1: जी हम लोग ठीक बा।
0: चलिए आज नदिया का पार के गाना सुना दी कौन?
1: जी बिल्कुल,
0: जो अच्छा रुआ लगे तो उनमें सुना।
1: अच्छा,
0: कहिया सुनाए?
1: इतर हुआ हमारे काल सुने को मिले।
0: ठीक बा, कोनो बात ना।
1: जी, और गाना क्यों के सुनवाई वो करें?
0: पूरा सब कोई के आदमी का कट्ठे सब कोई के।
1: जी बिल्कुल, और सब ठीक बा ना?
0: हाँ हाँ, सब बढ़िया बा, सब बढ़िया बा।
1: गाना प्ले करता नहीं?
0: जी
1: सुनत रहे रेडियो रंजन 90.4।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, नमस्ते मैम जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमझम 90.4 FM में।
7: जी हाँ, सुरभि बोल रही हूँ।
6: जी जी, कैसी हैं सुरभि जी?
7: ठीक हूँ, आप लोग बताइए।
6: जी हम लोग भी ठीक हैं।
7: रिकॉर्डिंग हो रहा है?
6: जी रिकॉर्डिंग ही हो रहा है अभी।
7: अच्छा, तो कौन सुनना है?
6: जी बता दीजिए कौन सा।
7: कितना भी कर कम लगेगा
6: आपकी आवाज करते यार, एक बार और बता दीजिएगा।
7: कितना भी कर लेते हैं आप हमको कम लगेगा।
6: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है
7: आपको? और मेहमान हमको मेरी बहन है छोटी, उनको और जितने भी सुनने वाले हैं उन सभी को।
6: जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमझिम 90.4 FM।
7: थैंक यू मैम।
6: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 91.4 एफएम में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
0: लाल बाबू बोल रहे हैं।
1: जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपना बताइए।
1: जी, हम लोग का भी ठीक है।
0: फिल्म का नाम है जीगर।
1: बताने की बोल
0: आए हम बराती बारात लेके।
1: जी, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: लोहा है, काश है, गुड्डू है, सूरज है, रंजीत, रविंदर, संजय और आप है, आपका टीम है।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: मधु सर यहाँ से राजू कुमार बोल रहे हैं, साउंड सुनना है।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
5: ठीक हूँ, अच्छा हूँ
6: जी। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
5: तारी लाल यादव के कोई नया सॉन्ग बजा दीजिएगा।
6: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
5: हाँ, रेडियो सुनने वाले सभी गुरु को।
6: चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
5: ठीक है।

0: ओनली फॉर सुखाना सबे।
1: सलाम अलैकुम मैडम
2: जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: मैडम गाना सुनना है
2: जी। नाम बता दीजिए अपना पहले।
1: शमशेर।
2: और कहाँ से है शमशेर जी आप?
1: पानीपत से
2: जी। और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: दिल में टूट गया शीशे का चंद, दिल में टूट गया पत्थर का जवाना था
2: जी। और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: हाँ, सबसे पहले आपको, उसके बाद मेरी मम्मी को, उसके बाद मेरे भाई को, उसके बाद मेरे पापा को, जितने सुनने नवान उनको सबको
2: जी। वैसे क्या करते हैं आप?
1: काम करते हैं।
2: काम करते हैं मतलब क्या काम?
1: बोता चुनते हैं।
2: अच्छा चलिए ठीक है, तो
1: 10 साल काम हुआ।
2: अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं, आपका गाना प्ले करे तब?
1: हाँ प्ले कीजिए
2: जी। जी सुनते
1: हैं। थैंक यू मैडम,
2: वेलकम
1: गाना प्ले करने के लिए
2: जी। सुनते रहिए रेडियो रमजिन 90.4 एफएम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: गोपाल रोचा ग्राम का गवास से लागू।
2: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
3: मक्का की कटाई चल रही है।
2: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है।
3: और क्या, धूप पड़ रही है बहुत तेज?
2: गर्मी भी पड़ रही है।
3: गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है बहुत तेज, और मक्का की कटाई चल रही है। और क्या,
2: चलिए बढ़िया है। तो बता दीजिए, आप सुनना सुनिएगा?
3: गाना सुनना है वो दिल का क्या कसूर फिल्म का, वो मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है।
2: और गाना किसी को सुनवाएंगे?
3: सभी को सुनवाएंगे, ये रेडियो सुनते हैं सभी को, रिमझिम वाले को, और सुनील साहू जी, ज्योति साहू जी, जैन जी, नरेश प्रजापति को, इनको सुनना।
2: बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम, गाना सुनना चाहते हैं मैडम।
0: बिल्कुल, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: जितेंद्र दागर बात कर रहे हैं, गुना जिला ससबासा मध्य प्रदेश।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम जी, अभी रंजन सुन रहे थे।
0: जी तो कटाई का हो रहा है अभी?
1: अभी तो मक्का कटाई चल रही है, मैं तो नगीने का काम करता हूँ, जयपुर में चलता है।
0: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: गाने के बोल है अंजलि का, अंजलि मेरे अरमानों के पंख लगा। गाने डेडिकेट भी करना चाहूंगा दोस्तों को शेयर करना चाहूंगा, दोस्तों के नाम लेना चाहूंगा।
0: बिल्कुल, नाम ले लीजिए, बताइए।
1: गोपाल ओझा भी है, सुनील साहू भी है, राकेश है, गोलू है, अतुल है, सारों को रहेगा और आपको रहेगा और जुड़ी भी छोटा जुड़ रहे हैं, सबको रहेगा।
0: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: नमस्कार मैम।
6: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: जी आप नॉर्मल में बोल रहे हैं, भारती में बोल रहे हैं?
6: जी मैं भारती बोल रही हूँ।
7: जी जी, हम सुरेश को बोला था, निकल रही वो जिला देवघर झारखंड से।
6: हाँ जी, क्या हाल चल रहा
7: है? रवा रवा
6: हम तो ठीक बने, रुवा बताए रुवा कैसन बानी?
7: हम हो गए बिल्कुल ठीक। हुआ
6: क्या होता है अभी?
7: हाँ क्या होता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी बात घर में है, रुवा से हम पहली बार भोजपुरी में बात करते रहे।
6: हाँ हाँ बिल्कुल,
7: जी जी हमारा से उतना भोजपुरी बोले कि नहीं क्या होता है, हम कोशिश कर भोजपुरी, लेकिन हमको बड़ा अच्छा लगा था भोजपुरी बोलने।
6: भोजपुरी अच्छा से बोल लेता,
7: तो कोशिश कर रहे हैं की कहीं मिस्टेक न हो जाए।
6: बता
7: दी आज कौन सा गाना सुने? आज हम भरत शर्मा के कोनो निर्गुण सुना दी।
6: निर्गुण तो
7: करें। जी जी, और डेडिकेट रही सबसे पहले रोवा के, जितने आरजी रेडियो रंजन के आरजी है सब के, और जितने भी लिस्नर आरजी रंजन के सबके सुना होते हैं।
6: जी जी, और गाना प्ले करता नहीं सुनाते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।
7: थैंक यू मैम,
6: वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार,
1: हम बोल रहा हूँ सिवान जिला घर बोधा छपरा नीतीश कुमार पासवान।
0: जी कैसे हैं आप?
1: सही हूँ मैम, अपना बताइए।
0: जी हम भी ठीक हैं।
1: नवरात्रि कहिया हो रहा है?
0: नवरात्रि अभी तो मुझे भी इतना अंदाजा नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे भी। 11 अक्टूबर के आसपास शुरू होने वाला है।
1: 11 से स्टार्ट होगा। एक गाना सुना?
0: बिल्कुल बता दीजिए। कौन सा?
1: जीवतिया माई के बता दीजिए।
0: अच्छा जी,
1: आपको सुनाना है? पूरा पूरा टीम को सुनाना
0: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: वेलकम,
0: सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड

0: करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो मैडम, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
2: जी जी, कैसे?
1: हाँ हाँ ठीक है। गाना सुना है मैडम?
2: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा।
1: और रफी साहब का गाया हुआ है, कोई फूल ना खिलता तो कली भी ना होती।
2: जी जी,
1: ये गाना है रफी साहब का, ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
2: जी
1: हाँ, और ये गाना डेलिकेट रहेगा महावीर जी के नाम पे।
2: जी जी,
1: बहुत आप कॉल अटेंड की है जी मैडम आज।
2: नहीं, हम तो आज शुरू किए हैं थोड़ा लेट से।
1: कितना हुआ था? 11:18 हम ट्रायल एक बार किए थे, तो आप बिजी बता रहे।
2: मतलब लेट से शुरू किए हैं, 5
1: तो वही होगा, 5-7 लेट होगा। तो ट्रायल हो रहा था, फिर बीच में एक मतलब हम करीब 11:40 पर ट्रायल किए, तो नहीं होगा। फिर सोचे कि अब जाकर थोड़ा सा ट्रायल कर दे, तो देखे कि अब लग गया। तो ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम, लेकिन बहुत आप कॉल अटेंड कीजिए की है आज, इतना कि सारे लोग परेशान होंगे कॉल लगा के। तो ठीक है मैडम, तब ये गाना सुनवा दीजिएगा, कोई फूल ना होता कली भी ना होती, तो फिर आपको गया हुआ है।
2: ठीक
1: है मैडम,
2: करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
1: ओके।

0: हेलो
1: रेडियो।
0: हाँ नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल चल बैठे?
1: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: बढ़िया बैठे हमारे।
1: सब कहा होता अभी?
0: तो पहचान लेनी हमके
1: विकास जी।
0: हाँ विकास जी।
1: सब और सब ठीक है ना?
0: और सब ठीक बैठे। खाना वाना हो गया?
1: हाँ हाँ खाना हो गया। अभी
0: नहीं, हमने खाना वाना खा ले लो। मछली रोटी वोटी बना ले रहनी जा और खतरा रख ले वानी जा। अब छुट्टी रहा ना, गांधी जयंती रहा तो आज 2 अक्टूबर के।
1: गांधी जयंती के सबसे छुट्टी में बा।
0: और बताई उन्हें बाढ़ के का समस्या बाटे गोपालगंज में?
1: बाढ़ शहर काफी ज्यादा बावे, हर जगह से पानी उन्हें पूरा बढ़ल जाता।
0: फिर और कॉल आज एक बार में लाग गए, ज्यादा कोशिश ना करे के पड़ेगा।
1: कॉल ओवरो तो जाता, देखी 12:46 होता।
0: तब आज गाना कौन सा सुनवाए?
1: बता दी कौन सा गाना सुने?
0: अपने पसंद से कोनो भी बजा दे गाना।
1: अच्छा भोजपुरी में सुने कि हिंदी में?
0: नहीं भोजपुरी में सुना, हमने के बिहारी है सुनू, हिंदी सुनी।
1: भोजपुरी में भी ऐसा नहीं है कि गाना अच्छा ना होगा, बहुत अच्छा अच्छा गाना
0: होगा। गाना भोजपुरी मैंने बराबर भोजपुरी ना नु उतना भी सुने ला, हिंदी सुने ला जान दे बजा दे कोनो भी बजा दे मैंने बढ़िया एकदम सेट सॉन्ग बजा दे।
1: रवि बता
0: दे। हम ही बता दे मिलेगा तो हम बता देंगे, यही वाली बात जाइएगा मैडम।
1: तो हिंदी में ना है?
0: हाँ हिंदी में बढ़िया है।
1: हाँ, हाँ।
0: दिल के सुकून करे वाला
1: गाना है।
0: भोजपुरी हमेशा तो हम भी सुनबे कर ला ऐसा
1: गाना। क्यों सुनेबो करे?
0: सबसे पहले रौदे के सुनवाए हमारे एक दिन सतवान भाई होंगे ना उपी से गोरखपुर के, और जितना रेडियो रिंग सुनने वाला हूँ सबसे।
1: और गाना प्ले करते हैं?
0: ठीक बच्चे सॉरी
1: रेडियो रिंग
0: गोरखपुर। ओके प्रणाम
1: प्रणाम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मध्य प्रदेश से।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया है मैडम जी, आप मिल रहे हैं?
6: जी
5: जी जी, बोलिए।
6: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
5: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है जय विक्रांता।
6: और गाने की बोल?
5: गाने को ले कोठे ऊपर कोठरी में उस पर रेल चला दूंगी।
6: जी बिल्कुल। और ये गाना आप किसी को सुनवाएंगे?
5: जी जी, सोनी मैम को, रजनी मैम को, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ती है और सत्यनारायण गहलोत जी है उज्जैन से, और कैलाश राजपूत जी है बिछिया से। इन सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
6: जी बिल्कुल। तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रमशन 90.4 FM।
5: धन्यवाद मैडम जी।
6: वेलकम।

0: हेलो
1: जी,
0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजील 90.4 एफएम में।
0: हेलो
1: हेलो
2: जी, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजील 90.4 एफएम में।
2: जी जी, मैं उज्जैन जिले के बंडागर तहसील से बोल रहा हूँ, सत्यनारायण गहलोत।
1: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
2: बस बढ़िया जी मैम।
1: क्या करते हैं?
2: और हमारे दोस्त जी सुनील जी साहू जी भी है मधुसूदनगढ़ से।
1: जी
2: हाँ,
1: वैसे आप क्या करते हैं?
2: जी मैम, मैं एक कॉन्ट्रेक्टर हूँ, मकान मालिक बनाने का। मकान जब मकान बनाता हूँ, कॉन्ट्रेक्टर हूँ।
1: चलिए, सब तो बढ़िया है।
2: जी हाँ,
1: आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: जी हाँ जी हाँ मैम, गाना सुना जी, वो राजा हिंदुस्तानी गाना सुना दीजिए मैम, परदेसी परदेसी जाना नहीं।
1: जी जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
2: जी जी, सभी रेडियो सुनने वाले को और हमारे मधुसूदन वाले जी साहू जी को।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
2: जी मैम,
1: सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू,
1: वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैडम
3: जी। नमस्कार।
2: और क्या हाल चाल हो रहा है?
3: हेलो,
2: क्या हाल चाल चल रहा है मैडम आपके यहाँ?
3: जी हम लोग का तो हाल चाल ठीक है और मौसम भी हल्का सा गर्म है, ज्यादा नहीं फिर भी ठीक है।
2: हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्म है मैडम।
3: अच्छा, नहीं तो थोड़ा बहुत हवा चल रहा है तो मैनेज हो जा रहा है।
2: अच्छा, हमारे यहाँ तो सोयाबीन की कटाई चल रही है तो घाम लग रहा है मैडम।
3: हाँ, तो बाहर इस समय निकलने पे थोड़ा बहुत तो धूप लग ही रहा है।
2: आ जाइए हमारे यहाँ भुट्टा खाने मैडम।
3: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है खाने में,
2: है ना?
3: हाँ,
2: हमें भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं ये कह रहा था मुझे एक गाना सुनवा दीजिए मैडम।
3: बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा।
2: मुझे वो सुनवा दीजिए, जेट की दुपहरी में पाँव जले सैया।
3: जी जी, और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: गाना सुनवाना है सुनील साहू जी को।
3: बिल्कुल,
2: चिकनगढ़ वाले।
3: जी जी
2: ठीक है। कब चलेगा ये?
3: ये आपको चलेगा कल शाम को 5 से 7 के बीच।
2: अच्छा
3: जी, बिल्कुल। आप अपना नाम बता देते तो अच्छा होता।
2: नाम गोलू साहू मकसूदनगढ़।
3: जी जी बिल्कुल,
2: आपका इंतजार रहेगा मैडम।
3: बिल्कुल इंतजार कीजिए, कल आपको सुनने को मिलेगा, 5 से 7 के बीच में सुनने को मिल जाएगा।
2: 5 से 7 के बीच में।
3: जी जी
2: मैडम, धन्यवाद आपका।
3: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
2: ठीक है, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।
1: मार्को जी स्वागत है कॉल उठाने के लिए।
0: जी
1: तो भाती जी क्या हाल चल रहा है?
0: हमारा हाल चल रहा ठीक बराबर, बताएं
1: क्या करें। गर्मी में परेशान बनी है लोग, पानी से परेशान बने। और घर परिवार में कैसन बा समाचार?
0: जी घर परिवार में सब क्यों ठीक बा।
1: और सब बताई?
0: और सब तो बढ़िया बा एकदम।
1: लिसनर लोग खाली आवाज सुन ला परेशान रहे लोग। एक बार गाना बटे जननी
0: बताई,
1: गंगा की कसम मैं हूँ बावड़ा, ये क्या कहते हैं ज्योति सरक पर सुनवाया गया है, ये गजरा वाली है झुमक वाली लहना वाली मैं हूँ बावड़ा चावला हूँ बावला।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो ये गाना अपने के मनोरमा जी के तमाम जितना दिन सुन सब को डेडिकेट बटे जन नहीं। तो गाना सुनावल जा सर कभी मौका मिली तो बतिया
0: जी। तो गाना प्ले करता नहीं
1: जी। तो सुनाओ के नमस्कार, मनोरमा जी को नमस्कार, सुनने वाला सब दोस्तों के नमस्कार बटे
0: जी। तो रेडियो रूम जी में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आई प्रोग्राम में इंतजार करता नहीं लोग।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: हमार बजरंगी पुलिस बन गई ने?

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भाई

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 अश्विन कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि दिनांक 6 अक्टूबर 2026 दिन मंगलवार के सुप्रभात रेडियो रुमझिम परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 6:10 पे होगा तथा सूर्यास्त 5:50 पे होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। हालात बदलते हैं तो सोच भी बदलती है, जिंदगी यही सिखाती है हर मोड़ पर। तो श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5 बज चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीतों के साथ।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।